एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 1 जून 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: 92 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का
1: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से

श्रोताओं कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया आधी, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अर्थात साधुओं की संगत, संत जनों की संगत हमें बेहतर से बेहतर चरित्र निर्माण को सीखने आगे बढ़ाती है। और वो संत जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती हैं, वो संत जो भगवान के चरणों में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, वो सिर्फ हरि नाम ही तो रटते हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही भक्ति गीत सुमन कल्याणपुर किसानों में, जिसमें वह कामना कर रही हैं कि इस मन को हरि चरणों में हम समर्पित कर भक्ति भाव से खुद भी ओतप्रोत हों और लोगों को भी ओतप्रोत करने की प्रेरणा दें। सुनते हैं ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। ये पंक्तियां बारह भावना का चिंतन करते हुए जब व्यक्ति सोचता है तो पाता है कि चाहे राजा हो या रंक, दुनिया से एक दिन सभी को जाना है और जीवन पानी की बूंद की तरह है, एक कब मिट जाए पता ही नहीं। सुनते हैं ऐसा ही एक भक्ति गीत जैन धर्म के आचार्य विमर्श सागर महाराज के स्वर में।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है चिंतन का, और चिंतन में आज आप सुनिए चरित्र पर चिंतन डॉक्टर सुरेश सम्राट से।
1: इसीलिए पूरे विश्व में श्रेष्ठ चरित्र के मनुष्य को नायक और पतित चरित्र के व्यक्ति को खलनायक की संज्ञा दी जाती रही है। चरित्र को शिक्षा से भी ऊपर माना गया है। प्रसिद्ध विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं, चरित्र है, और यही उसका रक्षक है। चरित्र को लेकर यह लोकोक्ति भी प्रचलित रही है कि जब धन जाता है तब कुछ भी नहीं जाता, जब स्वास्थ्य जाता है तब कुछ जाता है, लेकिन जब चरित्र जाता है तब सब कुछ चला जाता है। जीवन पर्यंत चरित्र का साथ होते हुए और चरित्र के संबंध में सारे ज्ञान होने के बावजूद व्यक्ति अपने ही चरित्र के साथ जो छल करता है उसे विडंबना ही कहा जाएगा। छल की यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। यह जानते हुए भी चरित्र जब एक बार गिर जाता है तब मिट्टी के बर्तन की तरह चकनाचूर हो जाता है। यह सच है कि समय के प्रभाव से जीवन मूल्य प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन शाश्वत जीवन मूल्य कभी नहीं बदलते। चरित्र ऐसी ही सर्वज्ञात मानवीय गुण है जिसके मूल्यों की सीमा प्राचीन काल से ही स्थिर एवं सुनिश्चित रही है। ऐसा होते हुए भी इसी मानवीय गुण के साथ सबसे ज़्यादा उपेक्षा अपेक्षा जुड़ी रही है। ज्ञान का दायरा ज्यों-ज्यों बढ़ा है और बुद्धि ज्यों-ज्यों विकसित हुई है, चरित्र त्यों-त्यों संदेह के घेरे की तरफ बढ़ा है। हालांकि इसके दुष्परिणामों और उनसे उत्पन्न विसंगतियों से हर देश काल को जूझना पड़ा है, लेकिन चरित्र के डगमग होने का सिलसिला भी प्रत्येक देश काल में जारी रहा है। चरित्र को लेकर एक सवाल हमेशा उठता रहा है कि आखिर छोटी मोटी परिस्थिति भी चरित्र को क्यों प्रभावित कर लेती है, वह भी उस समय जब विश्व का कोई धर्म और कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जिसमें मानव के संदर्भ में चरित्र प्रमुख ना रहा हो अथवा उनके द्वारा परिभाषित चारित्रिक गुणों में कोई ज़्यादा फर्क हो। यदि चरित्र है तो आस्था, अहिंसा, निष्ठा, कर्म, सत्य, सद्भाव, दायित्व, परोपकार और एकता जैसे गुण तो स्वतः ही वहाँ होंगे और धर्म तो वहाँ होगा ही, लेकिन यदि चरित्र नहीं होगा तो ये सब भी वहाँ नहीं होंगे। चरित्र के बिना ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं रह जाता, बल्कि वह बुराई की ताकत बन जाता है। माता पिता से मिलने वाले संस्कार और स्कूल की प्रारंभिक कक्षाओं में मिलने वाले ज्ञान से बचपन में जिस चरित्र का निर्माण होता है वह जब बाहरी दूषित परिवेश से टकराता है तो चरित्र की यह बुनियाद भरभरा कर गिरने लगती है। असत्य, हिंसा, स्वार्थ, अहंकार, बेईमानी जैसी प्रवृत्तियां युवा अवस्था से ही चरित्र को ऐसे प्रभावित करना शुरू कर देती हैं कि जीवन पर्यंत इन्हीं प्रवृत्तियों की गिरफ्त में व्यक्ति उलझ कर रह जाता है। ऐसे वातावरण में जिस चरित्र का निर्माण होता है उसमें सद्भावनाओं को स्थान मिल पाना कठिन हो जाता है और यहीं से चरित्र के दुष्प्रभावित होने की शुरुआत होने लगती है। वस्तुतः चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है और एक बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है। आदतें तर्क और समझदारी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। आदतें प्रारंभ में इतनी मामूली लगती हैं कि व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे पाता और बाद में वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता है और यहीं से चरित्र का डगमगाना शुरू होता है। व्यक्तियों के चरित्र से समाज का चरित्र बनता है और समाज के चरित्र से राष्ट्र का। जहाँ यह समीकरण होता है वहाँ धर्म, संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता भी सुनिश्चित होती है।
0: श्रोताओ, भी आप सुन रहे थे चरित्र पर चिंतन डॉक्टर सुरेश सम्राट से। एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। समय हुआ है श्री रामचरितमानस के गायन पाठ का। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में श्री रामचरितमानस का गायन पाठ।

अपने मन में उपजे मोह की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी भगवान राम के बाल रूप की अद्भुत छवि का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है ये मनोहारी रूप, लाल लाल हथेलियां मानो कमल की रक्ताभ पंखुड़ियां हों, भुजाओं पर रत्नजटित आभूषण, सिंह शावक की भांति कंधे, शंख के समान तीन रेखाओं वाली ग्रीवा, लाल अधरों के पीछे ऊपर नीचे दो दो दंतलियां, सुंदर गाल और चंद्र किरणों की भांति शीतलता प्रदान करने वाली मधुर मुस्कान। शिशु रूपधारी श्री राम आंगन में अपनी परछाई देखकर नर्तन करते हैं, कभी कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसके फुदक कर भाग जाने पर ललचाने के लिए उसे पुआ पकवान दिखाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की ये लीला देख काकभुशुंडी के मन में सहज ही कौतूहल होता है कि प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हैं, और मन में ये शंका आते ही उन पर प्रभु प्रेरित माया आच्छादित हो जाती है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन पाठ अनुराधा पौडवाल के स्वर में। सुबह के 6:45 हुए हैं, समय हुआ है कृषि सामयिकी का। इसमें आज आप सुनिए, ग्रीष्मकालीन मूंग एवं ग्वार की फसल में सामयिक कार्य विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री एस चौधरी।
1: ग्रीष्मकालीन मूंग लगा रखी होगी और निश्चित तौर पर अच्छी ही फसल होना चाहिए, लेकिन कुछ किसानों के यहाँ से शिकायत आई है कि हमारी खेत की मूंग में इल्ली आना शुरू हो गई है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने खलिहान में रखी फसलों को जल्दी गहाई कर लें, गहाई करके 1-2 दिन सुखा करके उनको भंडारण कर लें। उसके बाद अब रही बात आपकी मूंग की और ग्वार की, तो लगभग तापक्रम 42 के आसपास हो गया है, तो अब आपको हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता है। अब जहाँ तक निंदाई का सवाल है, तो निंदाई आप जो लाइनें हैं दो लाइनों के बीच में हो के द्वारा आप हो चलाकर निंदाई कर सकते हैं, या श्रमिक लगा करके आप निंदाई करा सकते हैं खुरपी के द्वारा। इस अवस्था में अब खरपतवार नाशी दवा डालना संभव नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में यदि खरपतवार नाशी दवा डालेंगे तो हमारा जो फूल आने की अवस्था है और फलियां बनने की वो प्रभावित होंगी, इसलिए खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग नहीं कर सकते। जहाँ तक कीट नियंत्रण का सवाल है, जो छोटी इल्ली दिखाई दे रही है किसान भाइयों, वो पत्तियों का रस चूसती है, और यहाँ तक कि इल्ली के अलावा माहू है, सफ़ेद मक्खी है, जेसेड है, ये भी थोड़े मात्रा में कीट दिखाई देते हैं। खरीफ की तुलना में ग्रीष्मकाल में बहुत कम, ना के बराबर कीड़े लगते हैं, लेकिन इल्ली की जानकारी प्राप्त हुई है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल डेमेटान 25 EC दवा, अगर ये उपलब्ध ना हो पाए तो डाई मिथोएट 30 EC 800 मिलीलीटर दवा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो ये जो इल्लियां हैं उनका कंट्रोल हो जाएगा। एक फली बीटर और फली छेदक, जो हमारी मूंग की फलियां बनती हैं उनमें इल्ली छेद करके फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो इस प्रकार की इल्लियों की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास नाम की दवा आती है, ट्राइजोफास 40 EC दवा, इसको क्या करना है, 900 ml दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग पर, खड़ी फसल पर छिड़काव कर दें, और इस तरह से आपका जो किसी भी प्रकार की इल्लियां हैं उनकी रोकथाम हो जाएगी। हालांकि ग्रीष्मकाल में मूंग में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती है, लेकिन यदि आपको लगे कि पीला मोजेक कहीं दिखाई दे रहा हो, तो इसके लिए मिथाइल डेमेटान 25 EC दवा आती है, इसको 1 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन के अंतर से 1-2 बार छिड़काव करने से ये सफेद मक्खी के द्वारा फैलती है, और अगर सफेद मक्खी नष्ट हो जाएगी तो पीला मोजेक भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और अगर आपको रोगी पौधे मिले ज्यादा, तो उखाड़ करके आप जमीन में दबा सकते हैं, इस तरह से भी हम अपना पीला मोजेक से नियंत्रण कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्वार का सवाल है, कुछ किसान भाइयों ने ग्रीष्मकाल में भी कुछ किसान भाइयों ने ग्वार की फसल लगाई है, तो किसान भाइयों, तापक्रम की बात मैंने बता दी कि लगभग 42 के आसपास हो गया, इसलिए पानी की आवश्यकता बढ़ गई है। ग्वार गहरी जड़ों वाली फसल है, इसलिए इसे हर हफ्ते पानी देना आवश्यक है, और इसको पानी की ग्रीष्मकाल में ज्यादा आवश्यकता होती है, और फूल आने पर तो पानी की आवश्यकता बहुत होती है, तो इसको सिंचाई का ध्यान रखें। खरपतवारों की जहाँ तक सवाल है, पौधे बड़े बड़े होने की अवस्था में हैं, अगर आप खेत में आसानी से चल सकते हैं तो हो के द्वारा ही आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं, हालांकि छाया अगर ज्यादा हो गई हो तो खरपतवार ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जहाँ तक कीट नियंत्रण का सवाल है, इसमें माहू और सफेद मक्खी और पत्ती छेदक कीट जो होते हैं ये बहुत प्रभावित करते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए 0.5% मेलाथियन 50 EC दवा, या 0.07% इंडोसल्फान 35 EC का छिड़काव करें। अगर किसी प्रकार की जैसे बीमारी रहती है, पर्णांग वाली बीमारी से बचने के लिए, पहले तो बीजों को हमको, यानी आप चाहें तो 100 PPM स्ट्रेप्टोमाइसिन से उपचारित करके बोना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि पत्तियों पर आ गया है तो ट्रेप्टोमाइक्लिन 150 PPM यानी 0.2% ब्लीटॉक्स के मिश्रण का छिड़काव करें, तो इस तरह की जो चूर्णी आस्था वगैरह भी है वो भी खत्म हो जाएगी, और सिंचाई का ध्यान रखें।
0: श्रोता भी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं ग्वार की फसल में सामयिक कार्य विषय पर जानकारी दे रहे थे एसएस चौधरी। सुबह के 6:50 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा आज प्रसारित होने वाली हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद 7 आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता, विषय रहेगा सांप्रदायिक सद्भाव। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आप हमेशा की तरह सुनिएगा भोपाल से। 7:20 पर आज आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का लेखक व्यक्तित्व, डॉक्टर सुशील कुमार से सुनेंगे ये वार्ता। 7:30 पर फिल्म संगीत होगा। 7:45 का समय रहेगा हमारे प्रातःकालीन सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी का। 8:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपको सुनाएंगे। 9 कार्यक्रम लोक रंग में आज लोक कलाकार विनोद पुरोहित और अनीसा बेगम को सुनिएगा। 9:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश होगा। 10 हम जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत और आज कलाकार होंगी गजल गायिका पिनाज मसानी। 10:30 का समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

दोपहर 12:25 पर आप सुनेंगे कुछ संदेश, 12:30 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम और 1 बजे सुनिएगा महिला कार्यक्रम। ये भोपाल केंद्र की प्रस्तुति हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सायंकाल 5 बजे युवा श्रोताओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होगा। युववाणी कार्यक्रम में आज आप भोपाल केंद्र की प्रस्तुति सुनेंगे और इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 6 बजे हिंदी समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी समाचार दिल्ली से रिले होंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। जी हां, सुबह 6:30 पर हम इसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:21 पर आप सुनेंगे चौपाल, इसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, आमदनी बढ़ाने में सहायक कृषि आधारित विभिन्न उद्योग। वार्ताकार श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया से ये भेंट होगी और इनसे भेंट करता होंगे श्री एस चौधरी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज प्रसारित होने वाले सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है, थोड़ी देर में संस्कृत समाचार दिल्ली से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आङ्ग ल्हाङ्ग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यान्मार भारतयोः मध्ये सुरक्षा सम्पर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिकयात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृतिसंरक्षणे स्थानीयसमाह्वानानां निराकरणे अन्यसामाजिककार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्टयोगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसम्बोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायाम् उदयोन्मुख क्रीडकानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एच.डी. देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्तः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनाङ्के भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-अधिक-ऊनविंशतिशततमात् वर्षात् 70-अधिक-ऊनविंशतिशततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5 से 9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। सुनिए सांप्रदायिक सद्भाव पर लघु वार्ता। हमें घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और परिंदों के यहां फिरका परस्ती क्यों नहीं होती। कभी इस दर पे जा बैठे, कभी उस दर पे जा बैठे। श्रोताओं, किसी मशहूर इकबाल शायर की ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि हम पक्षियों की तरह यदि अपनी एकता, अपना व्यवहार, अपनी शालीनता और अपनी सोच रखें तो तय मानिएगा हम कभी भी झगड़े में नहीं पड़ेंगे। आज देखने में आता है कि कई विनाशकारी शक्तियां ऐसी हैं जो भारत में जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी वेशभूषा के नाम पर, तो कभी किसी अन्य नाम से एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने का काम करती हैं। हमें ऐसी विनाशकारी शक्तियों को नेस्ता नाबूद करना

करना है। वजह वजह यही क्योंकि भारत सांप्रदायिक सद्भाव को मानने वाला देश है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी समुदाय के लोग सामाजिक समरसता के साथ निवास करते हैं और इन संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार अपनी परंपराएं, संस्कृति के उत्सव एक नई उमंग को जन्म देते हैं, नई सीख को बताते हैं। हिंदुओं द्वारा जहां होली दिवाली जैसा पर्व मनाया जाता है, वहीं इस पर्व के दौरान संदेश दिया जाता है कि आप मीठी सेवई पपड़िया खाकर, गुजिया पपड़िया खाकर आप एक दूसरे का स्वागत करें। और घर में जब इसको खाते हैं, नए कपड़े दिवाली पर पहनते हैं, रंगों से सराबोर होकर जब एक दूसरे को होली पर रंग लगाते हैं, तब हम ये भेद भूल जाते हैं कि कौन किस वर्ग का है। हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि आज होली है, एक दूसरे को रंग लगाने का और होली के रंगों में रंग जाने का पर्व है। ठीक इसी तरह से जब दिवाली आती है तो तरह तरह के रंग बिरंगे पटाखे छोड़कर आसमान में हम सतरंगी धनुष की तरह रंगों को देखते हैं और उस इंद्रधनुषी रंग की कल्पना करते हुए रंगों को एकायमान होते हुए देखते हैं। ये दर्शाता है कि हम भले ही अलग अलग जाति वर्ग के क्यों ना हो, लेकिन हम सब एक हैं। ठीक उसी तरह से मुस्लिम समुदाय द्वारा जब ईद उल फितर का पर्व मनाया जाता है तो मीठी सेवई को खाकर हम ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं, बच्चों को ईदी देते हैं। गले मिलकर ईद का मुबारकबाद देने के साथ साथ हम खुशियां मनाते हैं, तब भी लोग नए कपड़े पहनते हैं। सवाल ये है कि हम इन पर्वों की महत्ता से अपनी सामाजिक संस्कृति को बढ़ाएं और अन्य लोगों को भी इससे प्रेरित करें। ठीक इसी तरह से सिख समुदाय द्वारा जब गुरु नानक जयंती का उत्सव आता है तो इस उत्साह के साथ नगर में जुलूस निकालते हैं कि पंजाब और हरियाणा के लोक संस्कृति के गायक यहां आकर प्रस्तुति देते हैं, जो दर्शाते हैं कि भारतीय संस्कृति में पंजाब की संस्कृति का क्या रंग है। और गुरुद्वारों में बड़े बड़े लंगरों का आयोजन कर हर एक के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। ये पर्व हमें दर्शाते हैं कि आज जिस तरह से अकेले गुरु नानक जयंती को पंजाबी समुदाय या सिख समुदाय ही नहीं मना रहा, संपूर्ण जाति के लोग मिलकर के यहां पर गुरु नानक जयंती में शामिल होते हैं। ठीक इसी तरह से जब महावीर जयंती का उत्सव आता है तो भगवान महावीर की भक्ति करते हुए श्रद्धालु उनके अहिंसा के घोष को गुंजायमान करते हैं और कहते हैं कि भगवान महावीर की अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह के सिद्धांत हमें सीखना चाहिए। इसी तरह से बुद्ध जयंती और अन्य पर्वों को ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो आए संकल्प लें कि ये पर्व हमें क्या सिखाते हैं और इन धर्म गुरुओं से हमें एकता की, अपनत्व की, प्यार की, सांप्रदायिक सद्भाव की एकता सीखकर समाज में सद्भाव का वातावरण निर्मित करना है। ये प्रयास यदि हम सब करेंगे तो तय मानिएगा, भारत का सांप्रदायिक सद्भाव विश्व में हमेशा से अनूठा माना जाता रहा है और भविष्य में भी अनूठा माना जाता रहेगा। श्रोताओ, आप सुन रहे थे सांप्रदायिक सद्भाव पर लघु वार्ता। एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार भोपाल से रिले होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में लॉन्च की ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी एप्लीकेशन। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार जीता आईपीएल खिताब, विराट कोहली बने मैच के हीरो। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत म्यांमार संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर शनिवार को आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की थी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। कल 2 जून को वे मुंबई में उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। इससे पहले रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसान संगठनों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान और रासायनिक खादों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
1: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। आप सबसे मेरी अपील है, इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग

0: गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अहिल्याबाई का शासन आज भी रामराज्य की याद दिलाता है। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत और न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी को अहिल्या गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस मौके पर 18 हाईटेक ड्रोन और 10 पुलिस वाहन भी इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। ये ड्रोन कानून व्यवस्था और यातायात निगरानी में पुलिस की मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदौर में 3 नए थाने के खोले जाने की घोषणा भी की।
1: पुलिस कमिश्नर के माध्यम से 3 पुलिस थाने की आपने डिमांड की है, 3 पुलिस थाने भी इंदौर में बनाए जाएंगे और आवश्यक पुलिस बल जो निर्धारित मापदंड के हिसाब से अभी कम है, निश्चित रूप से हमारी सरकार एक एक करके वो सारे काम कर रही। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड स्थापित कर रहे हैं। पुलिस की भर्तियों में भी हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 पदों की भर्ती हर साल करते जा रहे हैं।
0: वहीं इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर यादव ने उज्जैन संभाग के 31 समर्पित शिक्षकों को भी सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में वे लोग शामिल थे जो नदी नाले पार कर और लंबा रास्ता पैदल तय कर दूर दराज के बच्चों तक पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। इस साल की थीम जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। इस बार वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। वहीं भारत में इस बार 15 मई से 5 जून तक 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त बर्तनों को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल टिकटिंग अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं भोपाल में कल पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ शहरी आवास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें देश भर में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शहरी योजनाकारों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों के विकास में प्रकृति और स्थानीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखना जरूरी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में नीदरलैंड से वापस लाई गई 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन 24 पट्टिकाओं में चोल वंश की उपलब्धियां और उनकी समुद्री ताकत का वर्णन है। श्री मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का भी उल्लेख किया, जो 6वीं-7वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल जिले में एक अनोखा गांव है जो सदियों पुरानी जनजाति कला को जीवित रखे हुए है। ये कला मूलतः भरेवा जनजाति की परंपरा है, लेकिन अब सामान्य समाज के लोग भी इसे अपना रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
3: जिला मुख्यालय बैतूल से महज 5 किलोमीटर दूर बसा टिगरिया गांव अब क्राफ्ट विलेज के नाम से अपनी पहचान बना चुका है। इस हस्तशिल्प कला को जीवित रखने वाले और गांव को अनूठी पहचान दिलाने के लिए वाघमारे परिवार मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह परिवार पीतल और बेल मेटल से आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां बनाता है। इनकी हस्तशिल्प कला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। इनकी मेहनत के चलते अब उनके गांव को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज घोषित कर दिया है। भरेवा कला के काम में माहिर बलदेव वाघमारे बताते हैं,
4: बैतूल जिले के 9-10 गांव में जो भरेवा समुदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग इस काम को करते हैं। बड़े गर्व की बात है कि बैतूल जिले को पहला GI टैग मिला हुआ है और भरेवा कंगन के नाम से कलाकृति तैयार किया था, जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है 2024-25 का। लगभग 500 से ऊपर कलाकार बैतूल जिले के अंदर इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश के 55 जिलों में से 1,44,000 से अधिक प्रगणकों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती और जानकारी जुटाई। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल तरीके से की गई। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी ली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी कल से 5 जून तक मालवा निवाड़ अंचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में जिला समन्वय समिति की बैठकें और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इस साल मानसून 5 से 7 दिन देरी से आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान है। विभाग ने आज धार और खरगोन में ओले बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि झाबुआ समेत कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कल आंधी और बारिश के चलते प्रदेश में तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया और सबसे ज्यादा गर्मी शाजापुर में 41.4 डिग्री दर्ज की गई। रायसेन जिले के छोटे से गांव सेमरी की बेटी अंजना यादव ने माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अंजना का साहस और संकल्प सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है। एवरेस्ट विजेता अंजना आज भारत लौट रही हैं और प्रदेश में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतने वाली बेंगलुरु अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा, झाबुआ, शिवपुरी, राजगढ़ और गुना समेत विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। नीमच आरसेटी संस्थान के द्वारा 3 जून से चीताखेड़ा मेन रोड कथित विश्राम भवन के पास महिलाओं के लिए निशुल्क 31 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीहोर में नगरपालिका द्वारा कलेक्टर कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर उपवन में कल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर मातृभाषा.com और हिंदी सेवी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के द्वारा व्याख्यान का आयोजन कल किया गया और डिंडोरी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: 2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं, समय हुआ है हिंदी वार्ता का। आज आप सुनिए अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का लेखक व्यक्तित्व, इस विषय पर वार्ता डॉक्टर सुशील कुमार से।
1: हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इन पंक्तियों की रचयिता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जेठ शुक्ल एकादशी संवत 1954 शुक्रवार, तदनुसार 11 जून सन 1897 को शाहजहांपुर नगर के खिरनी बाग मोहल्ले में पंडित मुरलीधर के साधारण परिवार में हुआ था। आपके पूर्वज मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के तोमरधार क्षेत्र स्थित बरबई ग्राम के निवासी थे, जो पारिवारिक कलह के कारण अपना देश छोड़कर शाहजहांपुर में आकर बस गए थे। आपके पिता श्री मुरलीधर जी कचहरी में स्टाम्प बेचा करते थे। आपकी माँ ने अपने प्रेमपूर्ण उपदेशों से आपको एक नई दिशा दी, अन्यथा बचपन के बाल सुलभ कोटुओं के कारण आपका जीवन एक प्रकार से बर्बाद हो चुका था। उर्दू माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के कारण उपन्यास, शेरो शायरी, इश्क मुश्क की कहानियां पढ़ने तथा बुरी संगत से धूम्रपान करने जैसी अनेक बुरी आदतें आपके अंदर घट कर चुकी थी, जो अच्छे अभ्यासों के परिणाम स्वरूप बड़ी ही मुश्किल से छूट पाई। उर्दू मिडिल में 2 फेल होने पर आपको हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से शाहजहांपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भर्ती करा दिया गया। वहां सुशील चंद सेन नामक विद्यार्थी की संगति से आपकी धूम्रपान जैसी भयानक लत भी छूट गई। जब आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, तभी भाई परमानंद की फांसी का समाचार सुनकर आपने हिंदुस्तान से अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने की कठिन प्रतिज्ञा की और अपने गुरु स्वामी सोमदेव जी को अपनी कविता के रूप में लिखित प्रतिज्ञा के संबंध में बताया। गुरु सोमदेव जी ने क्रांतिकारी पथ की दुर्गम संभावनाओं के बारे में विस्तार से समझाते हुए इस मार्ग पर न जाने की सलाह भी दी, किंतु आप तो एक बार मन में संकल्प कर चुके थे, अतः अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने का ही आग्रह बार बार करते रहे। अंततः आपके संकल्प की विजय हुई। वाणी और बंदूक के धनी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी गुप्त समिति में आते ही अपने तेजस्वी व्यक्तित्व और प्रभावी नेतृत्व कौशल से पूरे उत्तर प्रदेश में छा गए। यही नहीं, ओजस्वी वक्ता, तेज तर्रार लेखक, जोरदार शायर और कुशल संगठनकर्ता होने के नाते आपने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश

0: महाराष्ट्र क्रांतिकारी दल, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ का पुनर्गठन बड़े ही जोर शोर से किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की नेतृत्व क्षमता पर मुग्ध होकर मन्मथनाथ गुप्त प्राय कहा करते थे, पंडित जी जैसे बहादुर नेता के नेतृत्व में अगर प्राण भी त्यागने पड़े तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। फांसी के पूर्व बिस्मिल जी ने अपने एक मित्र को पत्र लिखा था। उनके पत्र का सारांश इस प्रकार है, 19 तारीख को जो कुछ होना है उसके लिए मैं भली भांति तैयार हूँ। मृत्यु कोई चीज नहीं है, केवल शरीर बदलना है। मैं नया शरीर लेकर पुनः धरती पर आऊंगा और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राण प्रयत्न करूंगा। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाएगा मैं इसी तरह जन्म लेता रहूंगा और फांसी पर चढ़ता रहूंगा। मरते रोशन बिस्मिल लहरी अस्फाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों, उनके रुधिर की धार से उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वथा दुख शोक के लवलेश का। 30 वर्ष की अल्पायु में पूरे 11 वर्ष उन्होंने क्रांतिकारी जीवन जिया। 11 जून 1897 को उनका जन्म हुआ और सोमवार 19 दिसंबर 1927 अर्थात पौष कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 1984 को प्रातःकाल 6:30 बजे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। राम प्रसाद का उपनाम बिस्मिल था, इसी नाम से हिंदी जगत में वे एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। उनके अंतःकरण में जो कुछ था वही उनकी कृतियों में निहित है। उनकी कृतियों में भी आग की चिंगारियां और क्रांति की लपटें हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने कुल 11 पुस्तकें लिखी हैं। स्वरचित कृतियां मन की लहर, निज जीवन एक छटा, स्वदेशी रंग, क्रांतिकारी जीवन, अनुदित कृतियां, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, बोल्शेविकों की करतूत, कैथराइन, अरविंदकृत, योगिक साधना, संकलित और संपादित कृतियां, प्रभा, सोमदेव जी की 2 पुस्तकें संकलित एवं संपादित। मन की लहर पुस्तक में उनकी हिंदी कविताएं, उर्दू गजलें तथा कुछ एक अन्य मित्र कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। इसमें कुल 46 कविताएं हैं। यह कृति विक्रम संवत 1977 में 36वें राष्ट्रीय महोत्सव पर आर्य भास्कर प्रेस आगरा से प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्रता का आह्वान उनकी ऐसी उत्कृष्ट रचना है, इसमें उन्होंने स्वाधीनता रूपी देवी का आह्वान किया है। वे इस कविता में स्वाधीनता की देवी को गुलाम देश भारतवर्ष में साक्षात रूप से पधारने का निमंत्रण देते हुए उसकी सेवा में सर्वस्व समर्पण करने को उद्यत हैं। किया है हृदयासन तैयार तुम्हारे आने भर की देर, अगर कुछ वाहन को दरकरार, खड़ा है साहस बनकर शेर, करेंगे सेवा हम सब दास, तुम्हें देंगे सब भांति सुवास, तुम्हारा लेकर नाम निराश, तोड़ कर सारे बंधन पास, सत्य का झंडा लेकर वीर चलेंगे श्री चरणों के साथ, पहन कर प्रभापूर्ण प्रिय चीर, देवी आओ अब करो सनात। आर्य भू क्यों है दुखी, मैं आर्य भारतवर्ष, जिसे पहले आर्यवर्त भी कहा जाता था, कि वर्तमान दुखमय स्थिति के लिए उत्तरदायी तत्वों पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जहां वे लिखते हैं कि इस देश में पतन का कारण क्या है। न तो जापान की तरह यहाँ ज्वालामुखी ही फटे, न प्लेग की महामारी फैली, न कोई भूकंप आया, न प्रलयंकारी बाढ़ ही आई। इसके बाद वे इसका कारण स्वयं ही खोजकर बतलाते भी हैं। इसका प्रत्यक्ष कारण है शारीरिक और मानसिक गुलामी। आर्य भूतव शांति जा रमणीयता वह है कहाँ, क्यों म्लान है तेरा बदन यह दीनता कैसी यहाँ, हाय जो तुम देखते हो आज यह दुखमय दशा, उसका आखिरी कारण यही है मैं बनी हूँ परवसा। जीवित जोश कविता लंबी है और हृदय की जीवंतता के लिए जोश की महत्ता पर प्रकाश डालती है। शांति भक्ति व्यक्ति अमय विनय मन वचन कर्म, इन तमाम मार्गों से जोश का प्रवेश ही स्वतंत्रता की लक्ष्य प्राप्ति का समाधान बतलाया गया है। शक्ति का लुटता है सर्वस्व, न होंगे हम उसके बटमार, भक्ति का उठता है वर्चस्व, न होगा भारत माँ के द्वार, व्यक्तियों के सिंहासन हिले हिलाते नहीं हमारे, व्यक्तियों के सोल स्वयं मिट चले हमारा त्याग प्राण के साथ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन की लहर का संग्रह में उनकी इतिदायी दौर से लेकर मुकम्मल दौर तक की तमाम रचनाएं अपने सर्वस्व ओज और सोज के साथ लिखी हुई मिलती हैं। इनमें हिंदी की उत्कृष्ट रचनाएं भी हैं, उर्दू की बेहतरीन गजलें भी हैं, कतई नज़में और कव्वालियां भी हैं। सब कुछ मिलाकर गागर में सागर समेटे हुए यह एक अच्छी कृति है। निज जीवन एक छटा गोरखपुर जेल से फांसी के 3 दिन पूर्व लिखकर बाहर भेजी गई उनकी आत्मकथा स्वदेश के संपादक श्रीयुत दशरथ द्वेदी के माध्यम से पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कानपुर पहुंची थी, जिसका संपादन विद्यार्थी जी के निर्देश पर पंडित विष्णुदत्त शुक्ल ने किया था। मूल आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। प्रथम खंड आत्मचरित के अंतर्गत बिस्मिल ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, कुल का उद्भव और पूर्वजों के आवर्जन आदि का विशद वर्णन किया है। आत्मकथा का द्वितीय खंड स्वदेश प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें थोड़ी सी भूमिका बांधकर किस प्रकार से वे क्रांतिकारी के संपर्क में आए, कैसे लखनऊ कांग्रेस में उनका प्रथम परिचय गुप्त समिति से हुआ और किस प्रकार उन्होंने अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली नामक छोटी सी पुस्तिका लिखकर पहले छपवाई, इसका उल्लेख है। आत्मकथा के तृतीय खंड को स्वतंत्रता जीवन शीर्षक दिया है। इसके अंतर्गत पुस्तक प्रकाशन तथा उसमें होने वाली तमाम कठिनाइयों एवं हानियों का भूमिका स्वरूप उल्लेख करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया है। परिणाम शीर्षक से दिए हुए अंतिम अध्याय में उन्होंने अपने जीवन के संपूर्ण कार्यकलापों का आकलन करते हुए एक अंतिम निचोड़ निष्कर्ष के रूप में दिया है, जो भारत की भावी पीढ़ी के लिए अच्छे मार्ग निर्देशक का काम कर सकता है, बहुत अच्छी शिक्षा दे सकता है। यह अध्याय बिस्मिल के समग्र जीवन का निचोड़ है। स्वदेशी रंग उनके भाषणों, निबंधों तथा स्फुट लेखों एवं कविताओं का संगम है, आज उपलब्ध नहीं है। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में किया है। इसे सर्वप्रथम सुशील माला लेखमाला के अंतर्गत पिनहट आगरा से स्वयं बिस्मिल ने ही छापा था। क्रांतिकारी जीवन उनके समग्र क्रांतिकारी व्यक्तियों के जीवन पर आधारित कथा घटनाएं थी, जिसे उन्होंने बड़े परिश्रम से लिखा था। किंतु दुख तो इस बात का है, कोई भी प्रकाशक इसे प्रकाशित करने का साहस न कर सका। उन्हीं के शब्दों में, आगरा, कानपुर, कलकत्ता आदि कई स्थानों में घूमकर पुस्तक मेरे पास लौट आई। अनुदित कृतियां, बोल सेविकों की करतूत, यह पुस्तक बंगला की निहिलिस्ट रहस्य का हिंदी अनुवाद है। कैथरीन, यह पुस्तक दी ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन नामक अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। यह लघु उपन्यास जीवनी के रूप में राष्ट्रीय ग्रंथ रत्नाकर हरिसन रोड कलकत्ता से प्रथम संवत 1979 में पंडित उमा दत्त शर्मा ने प्रकाशित किया था। पुस्तक के प्रारंभ में उत्सर्ग शीर्षक से जो वर्णन मिलता है, उसे हम ज्यों का त्यों यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। प्यारे अमरनाथ, जिस महान आत्मा की जीवनी तुम हिंदी में पढ़ना चाहते थे, वह तैयार है, किंतु काल कराल ने मेरे नवीन जीवन की सारी आशाओं पर कुठाराघात कर तुम्हें उसको पढ़ने से वंचित रखा। परमात्मा करे तुम्हारी हार्दिक इच्छा पूरी हो, अतएव यह तुच्छ भेंट तुम्हारे ही अर्पण है। अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, बिस्मिल जी ने इस पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। अरविंद घोष कृत योगिक साधना, यह बिस्मिल जी की बंगला से हिंदी में अनुदित रचना है। संकलित और संपादित कृतियां, राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रभा का संपादन बड़े कार्य कुशलता से किया। इसके अतिरिक्त स्वामी सोमदेव जी की दो पुस्तकें भी उन्होंने संकलित और संपादित की। बिस्मिल जी की कुल 120 गजलों में 17 हिंदी की तथा 103 उर्दू की हैं। उनकी हिंदी गजलें पढ़कर आप यह अंदाज लगा सकते हैं कि आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व भी उन्होंने हिंदी में गजलें लिखकर अपनी जन्मजात काव्य प्रतिभा का परिचय दे दिया था, जिसकी पहचान शायद उस समय नहीं हो सकी, क्योंकि उस जमाने में हिंदी उर्दू का कोई भेद नहीं था। दोनों ही जुबानें अपने हिंदुस्तान की जुबानें थीं और प्रायः समूचे हिंदुस्तान में इन्हें लोग समझते थे। बिस्मिल का प्रिय छंद बहरे रमल था, जिसमें उनकी 56 गजलें हैं। बहरे रमल को हिंदी में गीतिका अथवा बिंदु अंकन छंद के नाम से भी जाना जाता है। बिस्मिल की गजलों के अतिरिक्त कुछ कतऊ और नज्में भी लिखी हैं। नज्म की विशेषता यह होती है कि उसमें एक अफसाना बयां करने के लिए एक आधारभूत टेक बना ली जाती है, जो एक निश्चित क्रम के बाद लगातार आदि से अंत तक बनी रहती है। हैफ जिसपे कि हम तैयार थे मर जाने को, यक वक हमसे छुड़ाया उसी कसाने को, आसमा क्या यही बाकी था गजब ढाने को, ला के गुर्बत में जा रखा हमें तड़पाने को, क्या कोई और बहाना था तरसाने को। बिस्मिल की रचनाओं में जहाँ छंदमय गीता है, वहाँ काव्यानुभूति रसात्मकता भी है। उन्होंने अपने अंतःकरण की बात बिना किसी आग लाग लपेट के बनावटीपन से की है। बिस्मिल जी ने हास्य रस को छोड़कर प्राय अन्य सभी रसों की काव्य रचना की है। रस जहाँ काव्य की आत्मा है तथा छंद जहाँ काव्य का कलेवर है, वहीं अलंकार काव्य का आभूषण होता है। बिस्मिल जी के काव्य में अलंकारों की प्रचुरता नहीं, प्रखरता है। अलंकार उनके काव्य में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे किसी वन कन्या के जूड़े में सोन जूही। जिस प्रक्रिया द्वारा हमें शब्दार्थ का बोध होता है अथवा प्रतीति होती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। बिस्मिल की रचनाओं में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। क्रांतिकारियों के लिए बुलबुल, अंग्रेजी शासकों के लिए सयाद तथा जेल खाने के लिए कफस और पिंजड़े का प्रयोग करके उन्होंने लक्षणा और व्यंजना के सहारे अपनी काव्य यात्रा जारी रखी। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को व्यंजना के माध्यम से यह संकेत रूपी संदेश भेजने का प्रयास किया कि अगर कुछ करना है तो शीघ्र कर लो, वरना समय निकलने पर पछतावा ही हाथ लगेगा। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। सच तो यह है कि बिस्मिल द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य ही राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। उनका जन्म, उनका जीवन, उनका सुख दुख, उनकी मृत्यु, सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित था। देश हित पैदा हुए हैं, देश हित मर जाएंगे, मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे।
1: श्रोता भी आप सुन रहे थे।

अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का लेखक व्यक्तित्व डॉक्टर सुशील कुमार से। एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:03 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में ये गीत फिल्म ऐतराज़ से।

0: है सनम, ये नहीं मेरा भरम।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनते हैं फिल्म अपना देश से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर साथियों ने, आनंद बख्शी की लिखी रचना, आर डी वर्मन का संगीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है मोनू अवस्थी, भानु अवस्थी, केदारी अवस्थी, जयपाल अवस्थी और निद्रा अवस्थी ने, देहात थाना के पास पुरानी शिवपुरी से। आइए सुनते हैं श्रोताओं आप सभी की फरमाइश का इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:45 हुए हैं। समय हुआ है हमारे प्रातःकालीन सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी का।

नमस्कार। शिवपुरी सुनने वाले सभी रेडियो श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र संजीव बांझल का नमस्कार। मित्रों, मौसम की बार बार बदलाहट को हम देख रहे हैं। लगातार मौसम बदल रहा है। 3 दिन पहले जहां तेज आंधी के साथ बारिश गिरी, ओले पड़े, वहीं रात्रि में भी ये नज़ारा तब देखने मिला जब घर की लाइट चली गई, लोग बिस्तरों में थे और तब पता चला कि तेज बारिश के चलते ये सब हुआ है। अचानक आई इस बारिश ने हमें हालांकि शीतलता तो पहुंचाई, लेकिन 9 तपों के इस दौर में ज्योतिषियों की मान्यता को माने तो निश्चित रूप से ये वातावरण को एक अलग संदेश दे गया। इसलिए हम कोशिश करें कि पर्यावरण को सहेजें, इसलिए हम कोशिश करें कि जल संरचनाओं को बढ़ाएं, हम कोशिश करें प्राकृतिक संरक्षण के माध्यम से प्रकृति को सहेजने के वो सब उपक्रम करें जो वर्तमान की परिस्थितियों के लिए बेहद आवश्यक है। समय कितनी तेजी से बीतता है कि जून माह की शुरुआत आज से हो गई, यानी पूरे 6 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए और 6ठवें महीने की शुरुआत आज से हो गई। और इन अंग्रेजी के 6ठवें महीने की शुरुआत में हम संकल्प लें कि कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो ये जून जन जन के लिए यादगार बन जाएगा। यदि कुछ हम प्रकृति को सहेजने का संकल्प जून का महीना दिलाता है, क्योंकि आप सबको मालूम है 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस का होता है और ये दिन हमें संकल्प दिलाता है, ये दिन हमें नसीहत देता है, ये दिन हमें चेतावनी भी देता है। नसीहत इस बात की कि हम यदि प्रकृति को सहेज कर रखेंगे तो हमें बेहतर ढंग के वातावरण नई पीढ़ी को देखने मिल जाएंगे। और यदि चेतावनी इस बात की कि यदि हमने प्रकृति से खेलना बंद नहीं किया, भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई को बंद नहीं किया, तो तय मानिएगा एक दिन और विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा। तो आइए हम संकल्प लें कि हम जून, जो नए महीने की शुरुआत आज से हुई है 1 जून को, कि हम कोई ना कोई एक नेक काम इसमें ऐसा करेंगे जो समाज को प्रेरणा देगा, जो हमारे आसपास के लोगों को प्रेरणा देगा और हम सबको एक नई दिशा देगा। बात कर लेते हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर की। श्रोताओं, हम सब जानते हैं फिल्म जगत में वो नाम जो पर्दे के पीछे होते हैं। जी हाँ, और पर्दे के पीछे रह करके जो अपनी आवाज से कलाकारों को घर घर में पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी आवाज ही उनकी पहचान होती है। हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। जी हां श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी का निधन 80 वर्ष की उम्र में हो गया। और वो सुमन कल्याणपुर जो कई सारे फिल्मी गीतों को गा कर गई हैं, उनकी गीत आज भी लोगों की दिल और जुबान पर बसे हुए हैं। हम उन्हें याद करें, उससे पहले जानें कि सुमन कल्याणपुर ने उस दौर को जिया जिस दौर में लोगों को गाना तो छोड़ो, घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन लता मंगेशकर जैसी आवाज की धनी सुमन कल्याणपुर को हम सब कभी विसार नहीं पाएंगे। उनकी आवाज़ को विभिन्न गीतों के माध्यम से हम सब याद करते रहेंगे। आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर का गाया एक गीत जिसे हम सब ने अक्सर रक्षाबंधन पर सुना है। और जब जब राखी आती है, फिर चाहे आकाशवाणी हो या अन्य कोई रेडियो प्रसारण सेवा, टीवी हो या फिर कोई नया निजी चैनल, इन सब पर रक्षाबंधन के इस पर्व पर हमेशा की तरह एक गीत गूंजता है जो
रक्षाबंधन पर बहन से भाई के प्यार की अमानत को दर्शाता है। सुनते हैं इंदिवर का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया, सुमन कल्याणपुर का गाया ये 11 लोकगीत। गीत जो रक्षाबंधन की भी प्रेरणा देता है और हर रक्षाबंधन पर गाया जाता है।

0: जी हां श्रोताओ, ये गीत जहां रक्षाबंधन पर्व की याद दिला गया, ठीक उसी तरह से सुमन कल्याणपुर के गाए हुए गीत जब जब गाएंगे, जब जब बजाए जाएंगे आकाशवाणी से या किसी अन्य चैनल के माध्यम से, तब तब सुमन कल्याणपुर को हम सब याद करते रहेंगे। तो बात अभी चल रही थी सुमन कल्याणपुर के हमसे विदाई लेने के बाद उनको स्मरण करने की, अब बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाओं की। श्रोताओ, यहाँ पर महावीर सेवा सदन कोलकाता के माध्यम से मंगलम इकाई द्वारा दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन साप्ताहिक रूप से 25 मई से 31 मई के बीच किया गया, और इस दौरान इस सप्ताह में 200 के करीब मरीजों को, अर्थात ऐसे दिव्यांग साथियों को जिन्होंने दुर्घटनाओं में अपने पैर को खोया है या हाथ को खोया है और विषम परिस्थितियां उन्हें दिव्यांग बना गई हैं, उन परिस्थितियों में उस दिव्यांगता को दूर करते हुए महावीर सेवा सदन कोलकाता के आए हुई टीम ने जो उपकरण उन्हें प्रदान किए, उससे उनकी दिव्यांगता 5 से 6 घंटे में दूर हो गई। जी हां श्रोताओं, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें इतनी परेशानी हुई कि किसी का दुर्घटना में हाथ कट गया, किसी का स्प्रिंकलर में कड़ा पहनने से हाथ चला गया, तो हाथ की परेशानी को दूर करते हुए हाथ को, कृत्रिम हाथ को बनाया गया। वहीं एक ऐसे शख्स जिसकी गोली लगने से हाथ की हड्डियां चूर चूर हो गई थी, उसमें एक नया कृत्रिम हाथ इस ढंग का बनाया गया जो स्प्रिंगों से चलता है और वह उसके मूवमेंट के माध्यम से अब पुराने रूप में लौट सकेंगे। तो निश्चित रूप से मंगलम की यह पहल सराहनीय रही और शहर के, शिवपुरी जिले के तकरीबन 200 दिव्यांगों को एक नया जीवन दान दे गई। शिवपुरी के शिविर के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ और उपयोगी सूचनाओं की, जिसमें नशा मुक्ति दिवस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल मनाया गया, जिसमें सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और जन चेतना के साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। वहीं कौशल विकास अभियान के तहत कई तरह के शिविरों की शुरुआत भी की गई। बात कर लेते हैं शहर के पेयजल व्यवस्था को सुधारने की, तो इसमें जो पहल माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा की गई, उसमें कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा द्वारा बहुत सारी सुविधाओं का विस्तार किया गया, यहाँ तक कि डिप्टी कलेक्टर्स की ड्यूटी लगाकर तय कर दिया गया कि गर्मी के दिनों में शहर में किसी भी तरह से पानी का हाहाकार नहीं रहेगा, और विभिन्न वार्डों में उनकी ड्यूटियां लगाई गई ताकि वह वार्ड की निगरानी भी करेंगे और ये भी तय करेंगे कि किसी भी तरह से वार्ड में जो मोटरें खराब हैं उन पर नियंत्रण रख सकें, कैसे पानी पर जो अवैध कब्जा बोर्ड पर कर लेते हैं उनसे मुक्ति मिल सके और उसके साथ साथ लोगों में चेतना जागरण का विकास हो सके। इन सब बातों के साथ जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, निश्चित रूप से ये लोगों को घरों तक पानी पहुंचाने में जो टैंकर लगाए गए हैं वो सब भी सफल होगा। बात कर लेते हैं एक और सूचना की, वन रक्षक प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत समारोह शिवपुरी में संपन्न हुआ, जिसमें नए 79 प्रशिक्षकों को सीखा कि वह कैसे वन रक्षक बनकर इस सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज प्रसारित होने वाले प्रातःकालीन सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी की कुछ सूचनाओं के साथ उपयोगी जानकारी। अपने रेडियो मित्र संजीव बांझल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
5: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
6: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को IPL क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीष शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने

0: गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM 100.2 MHz पर। आप सुन रहे थे दिलवाले फिल्म का ये गीत, कुमार शानू की आवाज में। समीर की लिखी इस रचना को संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने। गीत सुनने की फरमाइश भेजी थी विजय शर्मा बिंदास, लवली शर्मा, पुनीत शर्मा और देवू शर्मा ने, झांसी तिराहा के पास शिवपुरी से। आइए सुनते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन, इस फिल्म का ये गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर, SP बाला सुब्रमण्यम ने, देव कोहली का लिखा ये गीत, राम लक्ष्मण का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है निमी सोनी, परी सोनी, तन्वी सोनी, जग्गू सोनी और संतोष सोनी ने, तारकेश्वरी कॉलोनी शिवपुरी से। सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हम आपके हैं कौन। इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, देव कोल्हे की लिखी रचना थी और राम लखन का संगीत था। गीत सुनने की फरमाइश भेजी थी मुन्ना कपूर, देवेंद्र कपूर, पुनीत कपूर और चुन्नू कपूर ने महावीर नगर शिवपुरी से। आइए अब सुनते हैं हसीना मान जाएगी। जी हाँ, इस फिल्म का ये गीत आशा भोसले मन्ना डे की आवाज में, कमर जलालाबादी की लिखी रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी से अनुराग जैन, देवेंद्र जैन, मनसुख जैन और पुनीत जैन ने। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का इस फिल्म का ये गीत।

0: कर पाया तो इतना याद रख जालिम तेरे बाबा की बाबा की बाबा की आ, तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा भूख हड़ताल कर दूंगा भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: लेकिन छोटी सी एक अर्ज है

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश सुबह के 9 बजे हैं, समय हुआ है कार्यक्रम लोकरंग का। आज कलाकार हैं विनोद पुरोहित और अनीशा बेगम। आइए सबसे पहले सुनते हैं विनोद पुरोहित के स्वर में ये लोकगीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग में लोक कलाकार विनोद पुरोहित के गाए लोकगीतों को। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सुनते हैं विनोद पुरोहित के स्वर में भगवान शंकर की भक्ति का ये लोकगीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग में लोक कलाकार विनोद पुरोहित को। आइए आप सुनते हैं अनीसा बेगम के गाए लोकगीतों को। सबसे पहले सुनते हैं उनका गाया ये वन्ना लोकगीत।

श्रोताओं, सुबह के 9:30 हुए हैं और समय हुआ है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आज हम सुनाएंगे आपको सुमन कल्याणपुर के गाए गीतों को। सुमन कल्याणपुर एक ऐसा नाम जिन्होंने फिल्म जगत में अपने गीतों से नई धूम मचाई। सुमन कल्याणपुर वो नाम जिन्होंने अपने गीतों को एक नया आयाम दिया, और उस दौर में जब महिलाएं इस तरह से गीतों को गाने के लिए आगे नहीं आती थी, तब लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर के साथ कुछ नाम ऐसे रहे जो तत्समय खासे सराहे गए, और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान फिल्म जगत में बनाई। आइए सुनते हैं आज सुमन कल्याणपुर को, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके गाए गीत हमेशा इस देश के जन जन को रोमांचित करती रहेंगी, हम सबको उनके गीत गुनगुनाने पर मजबूर करती रहेंगी। आइए सुनते हैं उनका गाया फिल्म जहां प्यार मिलेगा ये गीत।

सुमन कल्याणपुर वो शख्सियत जिन्होंने अपने गीतों से नया मुकाम बनाया। अपनी मीठी और पतली आवाज से उनकी तुलना लता मंगेशकर के साथ भी हुई और जब उनसे एक बार पूछा गया कि क्या वह लता मंगेशकर की तरह गाती हैं तो उन्होंने कहा, लता मंगेशकर जी की एक अलग पहचान है और वो लता मंगेशकर की तरह गाती हैं ये जनता की पहचान है। आइए सुनते हैं उनका गाया ये गीत फिल्म बात एक रात की। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, एसडी वाला मरियम का संगीत।

सुमन कल्याणपुर एक ऐसी पार्श्व गायिका जिन्होंने कई सारे फिल्मी गीतों को गाकर अपनी एक नई पहचान बनाई और तत्समय के गायक कलाकार चाहे वह मोहम्मद रफ़ी हों, मन्नाडे हों, किशोर कुमार हों, मुकेश हों या अन्य गायक कलाकार, इन सबके साथ गीतों की एक लंबी श्रृंखला सुमन कल्याणपुर की रही है। आइए सुनते हैं दिल एक मंदिर इस फिल्म का गीत, जिसमें मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर का गाया ये गीत खासा पसंद किया गया। हसरत जयपुर की लिखी रचना और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

सुमन कल्याणपुर, ऐसा नाम जिसने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया तो भी उनकी एक अलग पहचान बनी, मन्नाडे के साथ गाया तो अलग पहचान बनी, और मुकेश के साथ तो उनकी जोड़ी ऐसी बनी कि कई सारे गीत यादगार बन गए। सुनते हैं साथी फिल्म का वो गीत जो बरवश आज भी मुकेश और लता मंगेशकर के साथ सुमन कल्याणपुर की याद दिलाता है, क्योंकि लता मंगेशकर के गाए लोकगीत, गीत, कव्वालियां, गजलें हर एक लोकप्रियता के मुकाम पर पहुंची। ठीक उसी तरह से मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया ये गीत भी विरह की वेदना के साथ मिलन के संगीत का संदेश देते हुए लोगों के दिलों में बसा। आइए सुनते हैं, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, नौशाद का संगीतबद्ध किया इस फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर को, जिनका जन्म 28 जनवरी 1937 को बांग्लादेश के ढाका शहर में हुआ था। और फिर वह भारत देश में आकर के उन्होंने जब अपनी विभिन्न कलाओं के माध्यम से स्कूली शिक्षा पूर्ण की तो संगीत जगत में उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई और फिल्म जगत में वह आई। फिल्म जगत में उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया और नए गीतों की वह जनक मानी जाने लगी और उन गीतों को साथ मोहम्मद रफ़ी हों, लता मंगेशकर हों, मुकेश हों, गीता दत्त हों, आशा भोंसले हों, हेमंत कुमार हों, तलत महमूद हों, चाहे मन्ना डे हों, किशोर कुमार हो या शमशाद बेगम, इन सब कलाकारों के साथ उन्होंने कई सारे गीत गाए। बाल गीत भी उनके लोकप्रिय हुए, सुनते हैं उनका गाया ये लोकगीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वह चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं इंदौर जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने और वाचन स्वर है अभिषेक कड़ियार का। पिछले एक महीने में जिले में क्या क्या खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आमजन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात सबसे पहले इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। इस बड़े आयोजन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विदेशी मेहमानों के लिए प्रदेश की संस्कृति, कृषि उपलब्धियों और पर्यटन की झलक भी खास तौर पर दिखाई जाएगी। खेती की बात चली है तो किसानों के लिए भी एक उत्साहजनक खबर है। जिले में उन्नत तकनीक अपनाकर बेहतर उत्पादन और आय बढ़ाने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े चयनित किसानों को जिला स्तर पर 25,000 और विकासखंड स्तर पर 10,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में बीते दिनों युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 91 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिला। वहीं आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 300 से अधिक पदों पर प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। रोजगार के साथ साथ युवाओं को सुरक्षा सेवाओं में अवसर दिलाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शुरू की गई शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत इंदौर में 200 चयनित विद्यार्थियों को सैन्य बल, पुलिस और होमगार्ड जैसी सेवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं की प्रतिभा को खेलों में निखारने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छोटी बेटमा स्थित शासकीय राजा शंकर शाह विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स, हैंडबॉल और कुश्ती के लिए 200 सीटों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 11 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र की। शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से 3 विषयों क्रिया शरीर, रचना शरीर और शालाक्य तंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे आयुर्वेद शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में अब तक 15,000 से अधिक एक्सरे किए जा चुके हैं। टीबी की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव उपचार में इंदौर जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की एक मिसाल महू तहसील के आशापुरा गांव में देखने को मिल रही है। यहां 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आधुनिक और विशाल गौशाला विकसित की जा रही है। इस गौशाला में करीब 10,000 गायों के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंदौर की चर्चा हो रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 48,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 28,000 संयंत्र सिर्फ इंदौर महानगर क्षेत्र में ही स्थापित हुए हैं। आध्यात्म और पर्यटन के विकास के क्षेत्र में भी एक बड़ी घोषणा हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में 17,41,00,000 रुपए की लागत से श्री परशुराम श्री कृष्ण लोक विकसित किया जाएगा। यह स्थान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके साथ ही गंभीर और अजनार नदियों के पुनर्जीवन की योजना भी तैयार की जाएगी। न्याय व्यवस्था को लोगों के और करीब लाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी सफल रहा। बीते दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 107 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 47,00,000 रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। वहीं जिला उपभोक्ता आयोग में भी 57 मामलों का निपटारा कर 2,20,00,000 रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। और अंत में बात करते हैं उस संस्था की जो दशकों से देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाती रही है। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। देश विदेश के श्रोताओं ने इस लाइव कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं और यादें साझा की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस गरिमामय समारोह का समापन हुआ। इंदौर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे इंदौर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। समय हुआ है सुगम संगीत का। श्रोताओं, सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे गजलें और कलाकार होंगी जानी मानी पार्श्व गायिका इनाज मसानी। आइए सुनते हैं सबसे पहले शायर नसीम रिफत की ये रचना पिनाज मसानी के स्वर में है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में पार्श्व गायिका पीनाज मिशानी को। आइए सुनते हैं उनकी गाई ये गजल।

कार्यक्रम लोकरंग में आप सुन रहे हैं, सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं पिनाज मसानी की गाई गजलों को। लीजिए सुनिए उनकी गाई ये गजल। रचना हरि नारायण नवरंग।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं पिनाज मशानी को कार्यक्रम सुगम संगीत में। आज आप सुन रहे हैं उनकी गाई गजलों को। लीजिए सुनिए उनका गाया ये गजल, शायर हुमार भरवा की ये रचना।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे पिनाज मसानी की गाई गजलों को। एफएम एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए सबसे पहले सुनते हैं जाल फिल्म का ये गीत। इसे गाया है शब्बीर कुमार ने, आनंद बख्शी की लिखी रचना, अनु मलिक का संगीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अखियों के झरोखों से। जी हाँ, इस फिल्म का ये गीत, इसे गाया है हेमलता ने। गीत और संगीत रविंद्र का। सुनते हैं इस फिल्म का ये।

आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM 100.2 MHz पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये गीत लिया है हमने फिल्म दीदार यार से, इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत अमीर मिनाई का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है अशोक अग्रवाल, अनुणा अग्रवाल, अल्पा अग्रवाल, अलका अग्रवाल और इनके बहुत सारे साथियों ने पटेल पार्क के पास शिवपुरी से। सुनते हैं आपकी फरमाइश का इस फिल्म का ये गीत।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिएगा फिल्म हकीकत का ये गीत, लता मंगेशकर साथियों के स्वर में इंदिवर की रचना और बप्पी लहरी का संगीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 11 बजे को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पे तो बहुत बार ध्यान नहीं दे पाते हैं।
1: एक मिनट, हमारी सुनिएगा, ये घर का काम जैसे औरतें देखा करती, कहीं जो है पापड़ बनाना, कहीं मूंग की बड़ी बनाना, ये सब चलता रहता। अब लोग बागों का काम थोड़ी है, ये देहात में पड़ गए जो है, शहर में तो लोग बाग कुछ ना कुछ करते ही रहते।
0: काम कभी ऐसा थोड़ी कहता है कि हम देहात में हैं तो हमें आप नहीं कर सकते हो।
1: नहीं, और कोई काम नहीं रहता ना।
0: बात आपकी बिल्कुल बराबर है, लेकिन हमारा थोड़ा सा आग्रह कह लीजिए या सोच ये है कि घर के बाहर के काम और पैसे कमाने के काम ही नहीं होते हैं सिर्फ, घर के भीतर के भी काम होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घर की महिलाओं के साथ रसोई घर में ही काम करें या हाथ बटाएं, हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है यदि ऐसा करते हैं तो, लेकिन बच्चों के साथ समय गुजार सकते हैं।
1: पहले आप बताएं जो है, दीदी जी आप बोल कौन रही?
0: मैं अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ।
1: अच्छा जी जी जी जी
0: जी, बताइएगा कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: तो मुझे सुनना है फिल्म एक महल हो सपनों में, सपनों का
0: जी,
1: लता जी ने गाया है, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से ये भूलेगा क्या।
0: पसंद का गीत आप तक पहुँच रहा है।
1: जी जी।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन करेंगी, सुने कार्यक्रम
1: हाँ अमिता जी नमस्ते।
0: जी। नमस्कार
1: मैं ग्राम उजान बोल रहा, गेंदालाल परिहार।
0: जी। परिहार जी कैसे हैं,
1: बढ़िया मैम जी। मैं
0: क्या चल रहा है?
1: बैठे हैं फ्री, तो फोन लगा रहे हैं, गाना सुन रहा है।
0: क्या बात है जी। हम ये पूछ रहे थे कि जब आप लोग बिल्कुल फुर्सत में होते हैं, कोई ऐसा काम नहीं होता, तो ऐसा नहीं लगता कि घर परिवार के साथ या बच्चों के साथ समय गुजारा जाए?
1: हाँ सब, अभी क्या गर्मी ज्यादा पड़ रही, सब बच्चों के साथ ही रह रहे हैं क्या।
0: उनसे दोस्ती करने की, उनको जानने समझने की कोशिश की है?
1: मैं दो पोते हैं छोटे छोटे, तो
0: जी
1: उनके साथ में रहता हूँ, दिन भर उनको समय बिताता हूँ उनके साथ में
0: समय बिताते हैं तो
1: जी।
0: कुछ
1: अभी
0: खेलते हैं, कहानियां सुनाते हैं या?
1: क्या, एक 5 साल का है वो स्कूल जाता है, अभी छोटा है 1-2 साल का है, तो उसकी छुट्टी चल रही है। अभी मामा घर गया है, बड़ा वाला तो छोटा है साथ में, तो उसके
0: अच्छा
1: साथ खेलते रहते हैं दिन
0: हाँ,
1: भर।
0: ये हम ऐसा लगता है कि जो फुर्सत का समय है उसे यदि हम अपने घर परिवार के साथ गुजारते हैं तो रिश्ते और बेहतर होते हैं, मजबूती से बन पाते हैं।
1: जी मैम,
0: तो बताइए कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है वो 7 दिन,
0: वो 7 दिन, और
1: इसका
0: गीत
1: गाना
0: के
1: है
0: बोल
1: कंगना कंगना।
0: आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: जी
0: धन्यवाद।
1: मैम, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो हेलो नमस्ते। हरियाल
0: जी, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं?
1: जाटव, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश।
0: जी, कैसे हैं?

0: अपना उनका नाम भी जी।
1: पहुंच रहा है आपकी पसंद का गीत आप तक।
0: मैडम जी एक बात कहना चाहता हूँ।
1: जी बोलिए।
0: मैं ये मोबाइल से सुनता हूँ रेडियो, तो आजकल इससे मिस्टेक आ रही है, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं।
1: क्या दिक्कत आ रही है उसमें?
0: दिक्कत ये आ रही है कि मैंने कल शाम को 5:30 बजे खुला और 6:30 बजे बंद हो गया। समझो एक हफ्ते से माने रेडियो नहीं सुन पा रहा हूँ मोबाइल पर। क्या प्रॉब्लम आ रही है?
1: प्रॉब्लम जब अपन मोबाइल से सुनते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने मोबाइल की भी हो सकती है और नेटवर्क की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो
0: नेटवर्क तो ये मान लो कि अपन आईटेल का फोन चला रहे हैं सादा वाला।
1: कई बार जैसे मौसम आपने कहा खराब है ना?
0: हाँ,
1: मौसम का
0: हाँ,
1: बहुत फर्क पड़ता है नेटवर्क पर, दोनों ही नेटवर्क
0: हाँ,
1: पर, चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क हो या आकाशवाणी के कार्यक्रम जिन ध्वनि तरंगों से आप तक पहुंच रहे हैं। तो
0: हाँ तो
1: थोड़ा
0: मैं
1: सा
0: कभी कभी 1 घंटा के लिए, कभी 2 घंटे, कभी 1 हफ्ते से परेशानी आ रही है।
1: उसको आप एक काम कीजिएगा, एक बार पूरा बंद करके रिस्टार्ट कीजिए और जो आपका मोबाइल ऐप है जिस पे आप सुनते हैं उसे
0: हाँ जी
1: रिफ्रेश कर लीजिएगा। संभवतः जो दिक्कत आपको आ रही है वो नहीं
0: हाँ
1: आएगी।

0: फोन कर रहे हैं गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी, मेरा नाम मोलिना रॉय है, मैं सतना से बोल रही हूँ।
0: मोलिना,
1: मोलिना
0: मोलिना, वाह, एक नए तरह का नाम है, तो इसका मतलब मीनिंग जान सकते हैं क्या होता है?
1: हाँ, वैसे तो संस्कृत में एक शब्द है मलिन,
0: जी
1: तो उसी का ही वर्जन जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया।
0: जी जी जी
1: तो मोलिना का मतलब होता है मन की मलिनता को दूर करने वाला,
0: क्या बात
1: मोलिना।
0: है, बहुत प्यारा नाम है आपका।
1: थैंक यू।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी छोटी सी फुल्की की दुकान है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फुल्की आप घर पर ही बनाती हैं?
1: हाँ, सब मटेरियल में घर का बिना कलर यूज किए प्राकृतिक रूप का बनाती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। बनाने का काम भी आप करती हैं और दुकान लगाने का भी आप करती हैं, या उसमें परिवार के लोग शामिल होते हैं?
1: मेरे परिवार, मेरी दो बेटियां और मेरे हस्बैंड और मैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो फुल्की के साथ और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, और क्या ऐसा विशेष होता है कि लोग आपके यहाँ खाना उसे पसंद करते हैं?
1: वो जलजीरा मेन, और
0: अच्छा,
1: फुल्की की क्रंचीपन,
0: हाँ,
1: और मेरे देने का तरीका, मतलब साफ सफाई में मैं विशेष ध्यान रखती
0: जी
1: हूँ
0: जी
1: कि
0: जी
1: किसी
0: जी
1: प्रकार का गंदगी ना हो,
0: हाँ
1: जितना मुझसे बन सके।
0: जी जी जी
1: मैं जो सामान यूज करती हूँ वो अच्छे वाले करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे खाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए भी मैं अच्छा सोच सकती हूँ, तो और बच्चे जो आते हैं तो वो भी मेरे लिए, मेरे बच्चे समान ही हैं, तो
0: बिल्कुल
1: मैं
0: सही
1: उन्हें
0: बात है।
1: अच्छा दूँ।
0: जी, ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो चीज़ दे रहे हैं वो ताजी हो और
1: जी
0: स्वच्छ हो, तो उसका स्वाद तो जो होता है वो आता ही है, साथ ही सेहत पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। एक चीज और
1: जी
0: जानना चाहेंगे आप, कि आपको ऐसा लगता है किसी जगह विशेष पर दुकान होने से ज्यादा फायदा होता है चीजों में?
1: जी बिल्कुल। आप यदि कोई काम कर रहे हो और वो एरिया देखा जाए कि लोकेशन, मतलब वो कितना अच्छा काम करेगा, और आप अपना काम भी यदि अच्छा रखेंगे, तो शुरुआती में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर जहाँ धीरे धीरे आपका काम लोगों को पसंद आने लगता है, तो एक टाइमिंग बन जाती है कि इतने समय हमें वहाँ ये चीज मिल जाएगी। तो उसी समय मेरा जैसे बंदा हुआ कि मैं सिर्फ इवनिंग में खोलती हूँ, और मॉर्निंग में मैं अपने घर का काम करती हूँ, दुकान का काम करती हूँ, बच्चे कॉलेज जाते पढ़ने के लिए, तो उनकी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब वो आते हैं तो मेरा सारा सामान सेट कराते हैं, गाड़ी में रखवा के देते हैं, फिर मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बल्कि आपसे बात करके, जानकर तो अच्छा लगा ही,
1: जी
0: लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि अपन किसी भी काम को यदि बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं, तो यकीनी तौर पे हमें काम करने का एक संतोष तो मिलता ही है, हमारा नाम और हमारी चीज़ दूर दूर तक पहुँच

0: है। तो बताइए
1: जी
0: कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: वीर ज़ारा का, जी
0: वीर ज़ारा का कौन सा?
1: दो पल के यादों का कारवा।
0: पहुंच रहा है आप तक, धन्यवाद।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।

0: फोन करिए गीत
1: हेलो।
0: सुने कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्कार मैडम,
0: जी नमस्ते
1: इंदौर से अनिल बामनिया बोल रहा हूँ मैडम। मैं
0: जी। अनिल जी कैसे हैं?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं। क्या चल रहा है?
1: बस अब छुट्टी का समय खत्म हो रहा है मैडम, कल से स्कूल चालू हो जाएंगे।
0: अच्छा, कल से ही शुरू हो रहे हैं?
1: हाँ हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं, तो
0: जी।
1: एक्चुअली क्या 3 तारीख से 11वीं 9वीं और 11वीं की एग्जाम है,
0: अच्छा, तो मतलब
1: इसलिए।
0: ये टीचर्स के लिए छुट्टियां धीरे धीरे धीरे कम से कम ही होती चली जा रही हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपके हिसाब से आपकी नए सेशन के लिए?
1: बच्चे जो नए आएंगे उनको हमको उन्हें स्वागत करके और मोटिवेट स्वागत करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ता है कि आप अभी पुरानी स्कूल में थे, जब तक आपने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब ये बड़ी क्लास हो गई है तो इसमें तुम्हारा कोर्स भी बढ़ गया है, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगी पहले की अपेक्षा।
0: जी।
1: क्योंकि मिडिल और प्राइमरी के बच्चे होते ही है, तो हाई स्कूल में थोड़ा कोर्स बढ़ जाता
0: बढ़
1: है
0: जाता है। और आपको ऐसा लगता है अनिल जी कि ये सब करके बच्चे थोड़े मोटिवेट होते हैं?
1: मैडम, कहना चाहिए ये उसके टीचर को, या जो उसको गाइड करता है, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को,
0: जी।
1: ये वाली बात है।
0: हाँ, अच्छी चीज है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
1: फिर तेरी कहानी याद आई मैडम,
0: जी, इसका कौन सा गीत?
1: वो दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हेलो नमस्ते। ग्राम
0: जी नमस्कार।
1: सुराना जिला से शेख हैदर खान बोल रहे हूँ।
0: जी खान साहब कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है।

0: बस उसी की तैयारी चल रही है। पर्याप्त पानी गिरेगा तो बोनी होगी।
1: बिल्कुल। तो बोने के
0: हाँ
1: पहले जो खेत की तैयारी होती है वो किस चीज से कैसे करते हैं आप?
0: अभी तो गहरी जुताई जैसा कल्टीवेटर है, पंजा है, इस तरह करते हैं।
1: तो कितने दिन लग जाते हैं खेत की तैयारी में?
0: मैडम अब तो क्या बहुत से साधन है, ट्रैक्टर के पास 2-4 दिन के मुश्किल से। हाँ
1: अच्छा, बताइए कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
0: ये यादगार फिल्म का सुनना है, लता
1: जी,
0: जी की आवाज में गीत है, जिस पथ पर चला।
1: तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, धन्यवाद।
0: ओके ओके, थैंक यू, है ना।
1: जिस पथ पे चला उस

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मैं
0: जी। कैसे हैं,
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या हो रहा है इस समय?
1: अब इस समय तो मैडम जी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो थोड़ी देर बाद गेहूँ बाकी मक्का का की कटाई होने वाली है। फरुखाबाद
0: फरुखाबाद का मौसम क्या कह रहा है?
1: का मौसम तो ये है, 45 तापमान पहुंच गया, 45 पे।
0: इस समय तापमान लगभग सभी जगह इतना ही हो रहा है, और जितना तापमान मीटर स्केल पे कि 45 है कि 42 है कि 43 है, उससे कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है इस वक्त।
1: हाँ, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी तो मौसमी फल का लाभ उठाना चाहिए। जैसे कलिंदे, खरबूजा, ककड़ी हैं, खीरा है, और उनका सेवन करना चाहिए। खीरा है तो उनका
0: जी
1: सेवन करना चाहिए,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और पक्षियों को पानी रखना चाहिए। कहीं भी छत पे हो तो उनको पानी पर रखना चाहिए, दाना पानी रखना चाहिए, और भैंस पगु का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पानी टाइम से देना चाहिए, चारा पानी टाइम से देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये सब करना चाहिए या आप भी करते हैं?
1: करना चाहिए और करते भी हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: आज शुरुआत ये फिल्म का नाम है दिल,
0: दिल।
1: और गाने बोला ओ।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर, तहसील सरौन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: कैसे हैं आप?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं।
0: और क्या काम चल रहा है?
1: अभी कुछ काम नहीं चल रहा है, फुर्सत है, अभी तो बारिश का इंतजार है। जी
0: बारिश का इंतजार है, तो ये फुर्सत का समय कैसे निकालते हैं?
1: जी कुछ नहीं, मोबाइल के जरिए से मोबाइल फोन लगाते हैं, फिल्म संगीत सुनते रहते हैं, टाइम
0: अच्छा,
1: गुजर जाता है, कुछ टाइम निकल जाता है, सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
1: फिल्म का नाम है त्रिनेत्र।
0: त्रिनेत्र
1: जी,
0: जी, इसका कौन सा गीत?
1: एक गाना है ना कुमार सानू की आवाज में, धर्मेंद्र और मिथुन दादा पे शर्मा गया है, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा।
0: आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है। धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी कार्य को स्वयं करने में कुशल होते हैं, जबकि अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों को सिखाने में निपुण होते हैं। जो सिखाने की क्षमता रखता है वह उच्च श्रेणी के शिक्षकों में स्थान पाने के योग्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEADV.ac.in पर देखे जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में अपने द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में BNP के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान किसानों को प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक के उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस साल मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से। स्वर प्रीति सागर के हैं, गीतकार हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है बेरड़ी से और श्रोता हैं राजेश, गुंजन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन। अगले श्रोता खंडवा से हैं संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

मन्ना डे और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शोले से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से, श्रोता हैं श्रद्धा, अभय, परम, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। अगले श्रोता धामनी से हैं, समय लाल, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनेंगे फिल्म तीसरी मंजिल से। इस गीत को सुरों से सजाया मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार है मजरूह, संगीतकार आरडी बर्मन। फरमाइश इसके लिए आई है हमें नेपाल पैलेस सागर से। श्रोता है तिलक, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता बलिया से हैं, ओम प्रकाश, ऊषा, अमित और प्रतीक, रोशनी, प्रांजल, अवदेश, प्रीति और नवनीत।

एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश हमें आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोता हैं हरदेव, बलविंदर, जयतेग और मीरा।

अगला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से। गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन। फरमाइश हमें आई है राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से, श्रोता हैं राधिका, अनिष्का और तन्मय, साथ में हैं रोशन, कौशल्या, हेमलता, देवांगन, डिंपल। अगले श्रोता दतरेंगी से हैं, द्वारिका, किशोर, दीपक और झावेंद्र। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिसकिया का छठवां भाग।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकिया। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

प्रस्तुत है धारावाहिक की छठी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सायरा मुश्ताक को अपने घर वालों से अलग होकर रहने के लिए कहती है। इस बात पर मुश्ताक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लिए बिना वापस लौट जाता है। फाता सायरे को मुश्ताक से तलाक दिलवाने के मंसूबे बनाने लगती है। और अब आगे।

0: आओ फाता, आओ बैठो। कैसे आना हुआ?
1: अरे बहुत जरूरी काम था तुमसे।
0: कहो क्या काम है?
1: नहीं, पहले कबूल करो कि ये काम करोगे और किसी से कुछ नहीं कहोगे।
0: अरे पहले काम तो बताओ।
1: नहीं नहीं, पहले कबूल करो।
0: अच्छा कबूल करता हूँ, किसी से नहीं कहूंगा।
1: एक तलाकनामा भिजवाना है।
0: तलाकनामा किसका?
1: सारे का।
0: सारे का तलाकनामा?
1: हाँ सारे का तलाकनामा। मैं चाहती हूँ कि मुश्ताक सारे को तलाक दे दे तो मैं उसका निकाह कहीं और कर सकूं।
0: फाता, लेकिन मुश्ताक में क्या कमी है?
1: अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसने मेरे सामने ही सारे को मारा था?
0: सुना तो था, पर इसका ये नतीजा निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम था।
1: अरे मुझे ही क्या मालूम था कि मेरा अपना सगा भाई ऐसा निकलेगा और वो उसका लड़का मुश्ताक। अरे देखने भर से ही शरीफ लगता है। अरे खुदा ना करे किसी को ऐसा शौहर मिले जो एक माँ के सामने उसी की बेटी को मार सकता है, वो पीछे कैसा बर्ताव करता होगा?
0: सो तो हैं, पर यह तो सारे घरों में होता ही रहता है। थोड़ा ऊंच नीच तो चलता है।
1: हाँ थोड़ा बहुत तो होता है, मैं भी मानती हूँ, पर पानी जब सर से ऊपर उठ जाए तो उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा ना।
0: सारी इस तलाकनामे को मानेगी?
1: मानेगी क्यों नहीं, मैं उसके भले के लिए ही तो कर रही हूँ ये सब।
0: फाता एक बार तुम सोच लो, इतनी जल्दबाजी क्या अच्छी है? सारे और मुश्ताक के बारे में तो सोचो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
1: प्यार? हाँ करते थे, अब नहीं। मैंने जो देखा है उसके बाद तलाक होना ही एक जरिया है जो मेरी बेटी को बचा सकता है।
0: तुम्हारे घर की बात है तुम जानो। हाँ मुझे कब जाना है?
1: अच्छा तो सुनो, कल ही तुम मुश्ताक से मिलकर तलाकनामे पर सहमति ले लेना और उस पर दबाव बनाना कि तलाक के लिए मान जाए।
0: ठीक है, मैं कल ही मुश्ताक के पास जाता हूँ।
1: और याद रहे, काम होने से पहले किसी को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है।
0: जैसा तुम ठीक समझो, मैं किसी से नहीं कहूंगा।
1: ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़।

0: फजी, वक्त कितना बदल गया है। आजकल के बच्चे बड़ों की सुनना ही नहीं चाहते।
1: हाँ, उनके ख्यालात बदल रहे हैं और हमारे ख्यालात जैसे पीछे छूट गए हैं। अब उनके और हमारे ख्यालात मेल नहीं खाते।
2: करीम चाचा, करीम चाचा, आपसे कोई बाहर मिलने आया है।
0: कौन है?
2: वो मैं नहीं जानता, आपका पता पूछ रहा था। वो बाहर खड़े हैं।
0: कौन हो सकता है? अच्छा जा, उन्हें अंदर भेज दे।
2: ठीक है चाचा।
3: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं।
4: मैं मुश्ताक से मिलने आया था।
0: कहिए, क्या काम है मुश्ताक से?
4: फाता ने तलाकनामा भिजवाया था।
1: तलाकनामा?
0: फाता ने तलाकनामा भेजा है?
4: फाता चाहती हैं कि मुश्ताक सादे को तलाक दे दे।
1: क्या?
0: ये आप क्या कह रहे हैं?
1: या अल्लाह।
4: फाता ने जो कहा मैं वही कह रहा हूँ। मुश्ताक को बुलवा दे तो बेहतर होगा।
0: फजी, मुश्ताक को तो भेजना।
1: हाँ, भेजती हूँ।

0: तो आप आए हैं?
1: हाँ, मैं तलाक नामा लाया हूँ।
0: अगर आप अपनी इज्जत की सलामती चाहते हैं तो यहां से चले जाएं। इस मुद्दे पर मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा।
1: नाराज होने की कोई बात नहीं, जब सारे ही तलाक चाहती हैं तो आपको क्या परेशानी है उसमें?
0: नहीं, यह सच नहीं है। सारे ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे तलाक नहीं ले सकती।
1: मुश्ताक, मैं तलाक का संदेशा लाया हूं और आप सारे को तलाक दे दे, सारे भी ऐसा ही चाहती हैं।
0: आप अपनी काली जुबान को बंद करें और यहां से चले जाएं, यही आपकी बेहतरी के लिए ठीक होगा।
2: मुश्ताक, घर आए मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते।
0: मेहमान? मेहमान मेहमान की तरह होते हैं, यूं तलाकनामा लेकर नहीं आते।
2: आप अभी जाएं, एक बार फाता से बात कर लेने के बाद हम कुछ जवाब देंगे।
1: सुनिए, अब बात करने से कोई फायदा नहीं, सारिये भी यही चाहती हैं कि मुश्ताक उसे तलाक दे दे, और इसलिए फाता ने मुझे तलाकनामा लाने को कहा है।
0: लाइए, मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
2: मुश्ताक, ये तुम क्या कर रहे हो?
0: अगर सारे यही चाहती है अब्बू कि वो मुझे तलाक दे, तो मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
2: गुस्सा ना करो मुश्ताक, वक्त की नजाकत को समझो। ये वक्त आराम से सोचने और इस परेशानी का हल निकालने के बारे में सोचने का है, न कि गुस्से में गलत फैसला लेने का।
0: ये गलत फैसला नहीं है अब्बू। जब सारे ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक देना ही बेहतर होगा।
2: मुश्ताक, परेशानी का ये हल नहीं है, तुम्हें समस्या की तह तक जाना चाहिए। आखिर कोई तो वजह होगी जिसने तलाक लेने की नौबत ला दी।
0: अब्बू, सारे चाहती है कि मैं आप लोगों से अलग रहूं। और मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यही वजह है कि सारे मुझसे तलाक चाहती है।
2: जहां तक मैं जानता हूं, सारे ऐसा नहीं कर सकती। देखो मुश्ताक, तुम जरा फिर से सोच लो। तुम्हारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। देखो, सारे नादानी कर रही है, उसे समझाया जा सकता है। बेटा, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते टूटते, इतनी जल्दी ना करो, हमें जरा सोचना चाहिए।
0: अब्बू, अब कोई फायदा नहीं है, मैं तलाक नामे पर दस्तखत कर देता हूँ।
3: मुश्ताक, जल्दी ना कर बेटा, सारे अच्छी लड़की है और नेक दिल भी। कहीं कुछ दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश कर बेटा। सारे अगर तेरे साथ रहना चाहती है तो यही सही, तू कुछ दिन उसके साथ अलग रह ले। तू समझाएगा तो शायद मान जाए।
2: हाँ बेटा।
0: नहीं अम्मी, वो कुछ नहीं मानेगी। जिसके ख्यालातों में बुजुर्गों के लिए कोई इज्जत ना बची हो, उसे परिवार के बारे में नहीं समझाया जा सकता।
2: मुश्ताक, हमारे लिए परिवार अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है, जहां बाप दादाओं के साथ हमारे बच्चे उस सभ्यता और संस्कृति का पोषण करते हैं। लेकिन समय बदल रहा है बेटे, लोगों के विचार भी बदल रहे हैं। ऐसे में सारे का ये सोचना कि वो तुम्हारे साथ अलग रहे, तो इसमें गलत क्या है?
0: अब्बू, आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखती और दिखेगी भी नहीं, क्योंकि आप यही चाहते रहे हैं कि आपके बच्चे खुश रहे, और इसीलिए आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सारे की बातों को मान लूं। यह मुझे कबूल नहीं है अब्बू, और आप मुझ पर यह मानने का दबाव भी ना डालें।
2: मुश्ताक, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर जो फैसला तुम कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं, और ये तुम्हारे और सारे के लिए भी ठीक नहीं। देखो देखो बेटे, हम फाता और हसन भट से बात करेंगे, वो इस मसले का हल निकालेंगे।
0: अब्बू अब्बू, आप हमारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं।
2: हाँ बेटे।
0: पर सारे ऐसा नहीं सोच रही। फाता ने तलाक नामा लाने को आदमी भेजा है और अब सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं।
2: देखो बेटे,
0: मैं तलाक नामे पर दस्तखत कर देता हूं। ये लीजिए।
3: मुश्ताक, मुश्ताक
2: बेटा,
3: मुश्ताक मुश्ताक, दरवाजा खोल मेरे बच्चे। मुश्ताक मुश्ताक, दरवाजा खोल मेरे बच्चे, दरवाजा खोल। अजी सुनते हो, मुश्ताक ने दरवाजा बंद कर रखा है।
2: क्या
3: मुश्ताक?
2: अरे, अरे मुश्ताक, ऐसा ना कर बेटा। देख देख, मैं पहले ही कह रहा था जल्दी ना कर। अरे अब हमें सजा ना दे बेटा, दरवाजा खोल बेटा।
3: मुश्ताक दरवाजा खोल दे मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे इसका गम है, पर अपने साथ जुल्म ना कर बेटा। बाहर आ जा, आ जा बेटा, दरवाजा खोल, खोल बेटा।
2: रहने दे, मुश्ताक दरवाजा नहीं खोलेगा।
3: अजी कैसे नहीं खोलेगा, खोलेगा क्यों नहीं? मुश्ताक दरवाजा खोल बेटा, खोल दे।
2: वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि तुम्हारी और हमारी बात सुने और माने। छोड़ दो उसे, जब भावनाओं की चोट लगती है तो ऐसा ही होता है। वो सारे से बेपनाह मोहब्बत करता है। जब हमें सारे के इस फैसले से तकलीफ हो सकती है तो भाई मुश्ताक की हालत तो और भी खराब होगी। आखिर सारे उसकी बेगम रही है।
3: मुश्ताक का ये हाल उसी के कारण है। अरे यहाँ भी तो अच्छी भली थी, मायके गई तो ना जाने क्या हो गया।
2: अरे अब छोड़ो उसे, अब हमें मुश्ताक को संभालना है।
3: पर वो तो दरवाजा ही नहीं खोलता, हम क्या करें।

0: पाता पाता, देख मैं तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ।
1: लगता है काम हो गया। काम हो गया क्या?
0: होता क्यों नहीं, पहले तो मुझे देखते ही आग बबूला हो गए थे, लेकिन मैं भी अड़ गया कि तलाक नामा तो तुम्हें देना ही होगा, सो आखिर मुश्ताक को मानना ही पड़ा।
1: और मुश्ताक के अब्बा करीम नहीं थे?
0: करीम तो था, पहले तो मुश्ताक को समझाया, फिर मुश्ताक ने तलाक नामा पे दस्तखत कर दिया और करीम भी चुप हो गया।
1: तुमने मेरा काम आसान कर दिया, अब सारे और मुश्ताक को तलाक से कोई नहीं रोक सकता। मेरे लिए मुबारक दिन है या अल्लाह।
0: अच्छा तो अब मैं चलता हूँ।
1: इस तलाक नामे की खबर अभी किसी को ना देना।
0: जैसा तुम कहो, पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। अच्छा

0: अम्मी अम्मी
1: हाय सारे तुम
0: अम्मी किसके तलाक नामे की बात कर रही हैं?
1: किसी की नहीं, तुम जाओ, अभी तुम जाओ।
0: बताओ ना अम्मी, ये किसका तलाक नामा है?
1: अरे हाय, मेरा तो नसीब फूट गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई।
0: तो रो क्यों रही है?
1: अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खोटा निकला।
0: बेवजह अपने नसीब को क्यों कोस रही है अम्मी?
1: ना कोसू तो क्या करूं मेरी बच्ची, मुझे क्या पता था कि मेरे भाई का लड़का ही ऐसा करेगा।
0: आखिर हुआ क्या है अम्मी?
1: ये तलाकनामा आया है।
0: तलाकनामा?
1: हाँ, तलाकनामा मुश्ताक ने भेजा है।
0: क्या? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता अम्मी।
1: नहीं कर सकता? मुश्ताक ने ऐसा ही किया है, उसने तलाकनामे पर दस्तखत भी किए हैं।
0: नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक मुझे कभी तलाक नहीं दे सकता।

0: पाता, ये क्या हो रहा है? सारा क्यों रो रही है?
1: मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है।
0: क्या मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है?
1: हाँ, अभी एक आदमी मुश्ताक का तलाकनामा लेकर आया था, जिस पर मुश्ताक के दस्तखत भी हैं।
0: मुश्ताक ने तलाकनामा भेजा है? नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ, करीम व फजी से बात करनी होगी।
1: अरे अब कोई फायदा नहीं है, मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया है। अब उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं, समझे?
0: अरे कोई इतनी आसानी से तलाक कैसे दे देगा? मैं बात करूंगा, मुश्ताक से पूछूंगा कि उसने सारे को तलाक क्यों दिया।
1: खबरदार जो वहां गए, जिसने सारे को बदनाम किया उसके दहलीज पर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
0: फाता, अगर कहीं गलती है तो हम उसे दूर कर सकते हैं, पर हमें पता तो चले कि तलाक देने की वजह क्या है।
1: अरे वजह जो भी हो, तलाक

0: नामा भेजने के बाद हमारा मुश्ताक से कोई रिश्ता नहीं है।
1: मुश्ताक,
2: सारे सारे बेहोश हो गई। फाता, पानी लाओ, उठाओ इसे।
0: अभी लाती हूँ।
2: अरे जल्दी करो।

0: अरे अरे सुनो भाई, सुनो सुनो,
1: हाँ
0: अरे कुछ कुछ बातें करनी हैं, बहुत जरूरी।
1: कहो फाता, क्या काम पड़ गया?
0: अरे भाई, एक लड़का ढूंढना है,
1: लड़का किसके लिए?
0: अपनी सारे के लिए।
1: सारे के लिए?
0: अरे हाँ, मुश्ताक ने तो सारे को तलाक दे दिया है ना, अब उसका दूसरा निकाह करूंगी।
1: फाता, जो लोग सारे को जानते हैं वो उससे निकाह करेंगे नहीं, सो लड़का ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
0: या खुदा, मुश्किल क्या है, सारे को एक बार जो देख ले वो निकाह से इनकार नहीं कर सकता।
1: हाँ वो तो है, लेकिन सारे के लिए कैसा लड़का चाहिए?
0: देख, लड़का ऐसा हो
1: हाँ
0: जो अच्छा खाता कमाता हो,
1: हम्म,
0: और अगर वो घर जमाई भी बनकर रहे तो मैं अपना घर उसे बड़ी खुशी से दे सकती हूं।
1: देखता हूं, अगर ऐसा लड़का मिलता है तो मैं बताता हूं।
0: लेकिन भैया, ये काम जल्दी हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब तू जा।
1: जी जाता हूं, अगर कोई बात बनी तो जरूर बताऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज बेटा।
2: पता, ये आदमी क्यों आया था?
0: काम था।
2: उस आदमी से क्या काम पड़ गया तुम्हें?
0: अरे सारे के लिए लड़का ढूंढने को कहा है।
2: फाता, तू ये क्या कर रही है?
0: ओफो, अपनी सारे के लिए लड़का देख रही हूं, और उसके लिए भी यही ठीक होगा, शादी करके अपने घर चली जाए।
2: फाता, अभी अभी उस बेचारी को ये सदमा लगा है और तू उसके लिए एक लड़का देख रही है?
0: या खुदा, उसके भले के लिए ही कर रही हूं, मुश्ताक और उसके घर वालों को मैं दिखा दूंगी कि मेरी लड़की के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है।
2: अरे फाता, ये समय सारे को सहारा देने का है और तू उसे एक और सदमा देना चाहती है?
0: मैं सारे को रानी बनाना चाहती हूं।
2: फाता, जमीन पर रह और जमीन की सोच, आसमानों के ख्वाब पूरे नहीं होते। बड़े अरमानों से उसकी शादी की थी और उसका सदमा वो अभी झेल भी नहीं पाई है और तुम उसके लिए?
0: अरे बंद करो ये अपनी काली जुबान, जब देखो तो बुरा ही सोचोगे। अरे कभी तो अच्छा बोला करो।
2: फाता,
0: एक बात सुन लो मेरी, मैं सारे की शादी करूंगी, और अगर तुम सारे की खुशी चाहते हो तो चुपचाप सिर्फ देखते रहना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
2: वादा, तुम सारे के साथ ज्यादती कर रही हो। तुम मां होकर उसके भले के नाम पर तुम पाप कर रही हो। मुझे दुख है कि तुम मां होकर उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही हो।
0: बेटी की फिक्र है लेकिन तुम्हें नहीं। इंशाल्लाह अब मैं सारे के लिए ऐसा लड़का पसंद करूंगी जो खूब दौलत कमाता हो और सारे से मोहब्बत करे, साथ ही हमारी भी मदद कर सके।
2: फादा, दुख हो रहा है मुझे तुम्हारी इन बातों से। अरे बाप हूं मैं उसका, उसकी खुशी की फिक्र मुझे भी है, पर मैं तुम्हारी तरह मतलब फरोश नहीं हूं। जो अपने सुख के लिए बेटी का रिश्ता किसी पैसे वाले को दे दूं।
0: अम्मा चुप करो, या खुदा आज तक कोई काम मुबारक तरीके से करने दिया है मुझे? और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो जाकर रहो उस चौकीदारी कोठी में। मैं तुमसे पूछने नहीं जाऊंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
2: अरे फाता, तुम हमें सुकून से जीने दोगी या नहीं? या अपनी इन्हीं करतूतों से हमें परेशान करती रहोगी? अरे कभी तो चैन की जिंदगी बसर करने दो।
0: अम्मा मियां, चैन की जिंदगी बसर करने के लिए तो ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और वो तुम्हारे पास नहीं है।
2: फाता, पैसों से चैन नहीं मिलता, समझी? और अगर तुम अपनी आदत को नहीं सुधारोगी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कभी चैन नहीं मिलेगा।
0: जाते क्यों नहीं? अगर इतना ही दुख है मेरे काम से तो जाओ, जहां जाना चाहते हो चले जाओ। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत भी नहीं है। अब जो करूंगी मैं अपनी मर्जी से करूंगी।
2: या खुदा, तूने इसे किस मिट्टी का बनाया है? जाता हूं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, में सिसकियों का भाग 6। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी कार्य को स्वयं करने में कुशल होते हैं, जबकि अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों को सिखाने में निपुण होते हैं। जो सिखाने की क्षमता रखता है वो उच्च श्रेणी के शिक्षकों में स्थान पाने के योग्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवार में 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEAdvance.ac.in वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में अपने द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में BNP के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि गाँव गाँव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे कि उत्पादन भी बढ़े और खेत भी सुरक्षित रहे। प्रदेश में अभियान की शुरुआत आज रायसेन से लेकर राम गांव से की जा रही है। और वियतनाम के दानांग में 17 वर्ष से कम आयु की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

स्वस्थ दर्पण कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकारें अपनी रेडियो दोस्त दिव्या का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त और मस्त भी होंगे, साथ ही हमारे कार्यक्रमों को भी सुन रहे होंगे। श्रोता मित्रों, स्वस्थ और मस्त रहना हमारे हाथ में होता है, बस जरूरत होती है सतर्कता और जागरूकता की। अब जैसे हम बात करें कि हम अपने हेल्थ नंबर की, तो ये 14 अंकों की एक यूनिक डिजिटल पहचान है जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखकर डिजिटल रूप से एक जगह लिंक करता है, जिसे आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी कहा जाता है। यह नंबर आपको देश भर में एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान देता है, जिसके जरिए आप डॉक्टर के पर्चे, लेबोरेटरी की रिपोर्ट और दवाइयों का विवरण डिजिटली रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री कहीं भी कभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आप इसे आभा पोर्टल या मोबाइल नंबर आधार कार्ड का उपयोग करके भी बना सकते हैं। कोई भी नागरिक aabha.gov.in पर जाकर अपना आभा नंबर बना सकता है। इस नंबर से आप अपनी डॉक्टर के साथ स्वास्थ्य इतिहास को सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, सही जानकारियाँ हमें सुविधा और सुरक्षा दोनों में मदद करती हैं और हम विपरीत परिस्थितियों में भी सहजता से उचित व्यवहार करके अनुकूल परिस्थितियों में वापस आ सकते हैं। तो आप भी इस बात से तो सहमत होंगे, तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय हो गया है एक भेंट वार्ता का, तो आइए आपको सुनवाते हैं घुटनों का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजभिये की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका, मैं हूँ मनीष गजभिये। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में घुटनों के दर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है। चलने फिरने में दर्द, सूजन, अकड़न जैसी समस्या लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है, क्या समय रहते इससे बचाव संभव है और आधुनिक चिकित्सा में इसके कौन कौन से प्रभावी उपचार उपलब्ध है, इन्हीं विषयों पर जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप जैन को। आप वरिष्ठ ऑर्थोपेडिशियन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है और यह किन वजह से होता है।
2: देखिए, घुटनों के दर्द के एक तो बहुत सारे कारण हैं
1: जी।
2: उनमें से यदि चोट लगी है
1: जी,
2: तो अपन ये देखेंगे कि घुटने की कौन सी हड्डी में चोट है, फ्रैक्चर है, या उसके अंदर में बहुत सारे लिगामेंट्स रहते हैं, कैप्सूल्स रहते हैं, मेनिस्कस रहता है, तो क्या कहीं उसमें इंजुरी है, इंजुरी के कारण चोट है तो वो बात अलग है। या इसके अलावा ओवर वेट है, इंसान का वेट ज्यादा है, डायबिटीज है, या उसको थायराइड है, या यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा हाई है, या कई और दूसरे रोग हैं, इन्फेक्शन अगर है, फीवर है, चिकनगुनिया है, उसके भी कारण से घुटनों में दर्द पॉसिबल है।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है वह काफी ज्यादा बढ़ गया है, हम आपसे जानना चाहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और यह किस कारण से होता है।
2: ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है आजकल, और एज के साथ का ताल्लुक है। घुटने के अंदर का जो जॉइंट रहता है उसमें बोन के ऊपर में कार्टिलेज नाम की एक चीज रहती है, वो कार्टिलेज उम्र के साथ साथ थोड़ा घिस जाता है। सभी का घिसता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं। जो उस कैप्सूल के जॉइंट के कार्टिलेज के डैमेज होने के कारण जो अपने को घुटने में दर्द होता है उसको अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं
1: जी।
2: ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको एजिंग आर्थराइटिस बोला जाता है
1: जी।
2: और भी कई हैं कारण, जैसे कि अपने रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और इसके अलावा रूमेटिक आर्थराइटिस है, ऐसे बहुत सारे कारण घुटने के दर्द के हैं। पर मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, जो एज के साथ साथ होता है।
1: जी जी जी। महिलाओं में अक्सर देखा गया ये समस्या ज्यादा रहती है, तो इसके पीछे की क्या वजह है?
2: जी जी, महिलाओं में ज्यादा होने का कारण उसमें क्या है कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो ज्यादातर काम घर में या किचन में भी करती हैं, तो वो बैठ के करती हैं
1: जी।
2: और जैसे कि पालथी मार देती हैं, पूजा अगर करती हैं तो वो भी बैठ के होती है।
1: बिल्कुल।
2: और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल होता है, और ज्यादातर भारतीय महिलाओं की हाइट वो थोड़ी कम रहती है, वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो हाइट और वेट के हिसाब से जो बॉडी मास इंडेक्स, जिसको अपन BMI कहते हैं, तो उससे उनके घुटनों पे काफी ज्यादा आता है लोड, जिसके कारण से ये लेडीज में ज्यादा होता है
1: जी।
2: दूसरा एक कारण है कि जो भारतीय महिलाएं वो अपने खान पान का उतना ध्यान नहीं रखती हैं, ज्यादातर जो अच्छा खाना है या जो पौष्टिक भोजन है वो अपने फैमिली के बच्चों को या अपने हस्बैंड को, पुरुषों को दे देती है, और अपने ऊपर उतना ध्यान
1: नहीं देती
2: है। तो उनको पूरे पोषक तत्व जो है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, वो चीजें नहीं मिल पाती। ये भी एक कारण है कि लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी आपने। अब डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको कि हमें गंभीर मानकर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
2: देखिए, घुटनों का दर्द ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोग, खास तौर से लेडीज महिलाएं, उसको उतना ध्यान नहीं देती। वो ये मानती है कि अब हमारी एज हो गई है, या पीरियड आना बंद हो गया, मेनोपॉज हो गया, उसको वो लाइफ अंग मान लेती हैं कि ये तो चूंकि एज हो गई तो ये हमको हो गई होगा,
1: हो गई होगा।
2: पर जैसे लक्षण जो आपने कहा कि कौन से ऐसे हैं जिसको अपन माने के अपने को जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें मेन ये है कि जब अपन अपने नॉर्मल काम रोज के जब अपने को करने में दिक्कत होने लगे, और जब मेडिसिन खाने की आवश्यकता पड़े अपने को रोज, डेली जो है आपका काम जो है बगैर गोली खा के ना हो, और कई बार गोली खाने के बाद भी आपको लगे कि उतना आराम नहीं हो रहा।
1: जी जी जी।
2: और जो नॉर्मल काम है जैसे पालथी मारना है, या इंडियन टॉयलेट पे बैठना है, स्क्वैट करना है, उकड़ू बैठना है
1: जी,
2: सीढ़ी चढ़ना उतरना है, तो ये जो रोजमर्रा के नॉर्मल काम है अगर इनमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मीनिंग ये है कि अब आपको उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता
1: है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और आपको किसी भी तरह की परेशानी ज्यादा बढ़े उससे बेहतर है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से संपर्क कर किसी की परामर्श आप अवश्य लें। डॉक्टर साहब, घुटनों के दर्द की जांच किस तरह की जाती है? क्या आज के आधुनिक युग में एक्सरे, MRI या अन्य जांच किस समय आवश्यक होती है जब हमें लगता है कि हमें इसे कराना ही चाहिए?
2: देखिए, जब आपको नी में पेन स्टार्ट हो, घुटने का दर्द शुरू हो, सबसे पहली जो बेसिक जांच होती है वो एक्सरे होती है
1: जी।
2: घुटने के एक्सरे स्टैंडिंग अवस्था में लिए जाते हैं। नॉर्मली किसी चीज के लिए अपन जाते हैं एक्सरे के लिए, तो वो अपन किसी वो जो टेबल होती है उस पर कहते हैं आप पैर कर लीजिए, लेट जाइए। पर ये नी के लिए और स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस की जांच के लिए एक्सरे दोनों घुटनों के होते हैं और खड़े होके होते हैं, लोड बियरिंग एक्सरे अपन बोलते हैं
1: जी जी,
2: स्टैंडिंग एक्सरे। उसमें एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है, एक लेटरल व्यू होता है, मतलब एक सामने से लिया जाता है, एक साइड से लिया जाता है। मूल जो जांच है वो एक्सरे
1: जी।
2: इसके अलावा खून की भी कई किस्म की जांचें पेशेंट की होना चाहिए कि आखिर ये इनको क्यों हो रहा है और या इतनी स्पीड में क्यों हो रहा है, उतनी एज नहीं है कि जितना इनको हो रहा है
1: जी।
2: उसके लिए कई टाइप की खून की टेस्ट होते हैं, जैसे कि डायबिटीज की है, थायराइड की है, यूरिक एसिड की है, विटामिन डी का लेवल है, कैल्शियम का लेवल है, फास्फोरस का लेवल है, विटामिन B12 का लेवल जो बॉडी में है, तो ये सारी टाइप की खून की जो जांचें हैं वो भी घुटने के दर्द के निदान में, उसके डायग्नोसिस में अपने लिए आवश्यक है
1: जी।
2: और इसके अलावा घुटने का दर्द है ये जो कार्टिलेज के घिसने के कारण हो रहा है या जैसे और भी कई होते हैं रोग, गठिया अपन उसको जो बोलते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसके लिए एक RA फैक्टर की भी जांच होती है
1: जी।
2: यह भी खून की जांच होती है, उसको अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं। तो ये जांच भी घुटने के दर्द के जो होते हैं पेशेंट, तो उसमें अब की जाती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या हर घुटने के दर्द की सर्जरी की आवश्यकता होती है या बिना सर्जरी के भी इसका इलाज संभव है?
2: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल धारणा ये है कि साहब हम घुटने के दर्द के लिए डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने खराब हो गए और आपका घुटना चेंज होगा, ऑपरेशन होगा। तो इसके बारे में मेरा कहना ये है कि मरीज जब आता है डॉक्टर के पास वो काफी लेट स्थिति में आता है
1: जी।
2: तो उसको पिछले कई सालों से घुटने में पेन होता है और वो उस तरफ ज्यादा जो है ध्यान नहीं देता
1: जी।
2: ना वो दवा खाता है, ना डॉक्टर के पास जाता है, ना वो अपना वेट पे ध्यान रखता है, एडवाइस भी नहीं मानता, प्रॉपर डाइट, कैल्शियम विटामिन डी जो आवश्यक है वो भी नहीं लेता। तो चूंकि वो डॉक्टर के पास में देर से आता है, तब शायद वो चूंकि देरी से आने के कारण उसको कहा जाता है कि अब आपका घुटना इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि अब ये गोली दवा या किसी चीज से पूरा ठीक नहीं हो पाएगा
1: जी।
2: तो आपके घुटने चेंज होंगे। यदि व्यक्ति अपना ध्यान जो है स्टार्टिंग से ही रखे, अपने वेट पे कंट्रोल रखे, और अगर कोई दूसरे रोग भी हैं जैसे कि डायबिटीज है या थायराइड है, तो वो उसका भी इलाज ले और मेनली कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर ले, बैलेंस डाइट ले, तो शायद इसकी स्थिति नहीं आएगी
1: जी।
2: बिना ऑपरेशन के भी इलाज हो सकता है अगर वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास आ जाए
1: जी। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, घुटना प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट, इसकी

0: भी हो रहा है और 4 से 6 हफ्ते के अंदर में आदमी नॉर्मल परिस्थिति में आ जाता है
1: जी।
0: तो नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद में जो अपन ने नया घुटना इम्प्लांट किया है तो वो उसको काम के लायक करने के लिए 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक की फिजियोथेरेपी होती है कि जो अपन ने प्लांट ज्वाइंट नया डाला है वो काम के लायक हो जाए। तो इसमें 4 वीक्स टू 6 वीक्स तक का टाइम लगता है
1: जी।
0: तो 6 हफ्ते तक का टाइम आप जो मान लीजिए आफ्टर 6 वीक्स जो है पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है, कोई उसमें वो नहीं है प्रॉब्लम
1: जी जी जी। और साथ साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है।
0: खान पान का इस चीज में काफी ताल्लुक है, स्पेशली खान पान का ताल्लुक आपके वेट से है। ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं घुटने के दर्द वाले उनका वेट ज्यादा होता है, ओवर वेट रहते हैं, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, ज्यादातर का वेट ज्यादा रहता है
1: जी।
0: तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, तो उस कैलोरी के हिसाब से दिन में 3 टाइम कैलोरी को आप बांट के उतना ही फूड लीजिए, लेकिन जो बैलेंस डाइट अपने को आवश्यक है पूरा प्रोटीन स्पेशली विटामिन डी कैल्शियम विटामिन B12 और फॉस्फोरस, तो अपन को कैलोरी कम हो लेकिन जो पोषक तत्व हैं जो आवश्यक वो अपने को पूरे पहुंच जाए
1: जी।
0: और वेट भी अपना कंट्रोल रहे
1: जी।
0: तो खान पान का इस रोग में घुटने के दर्द का जो रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें खान पान का काफी महत्व
1: जी। डॉक्टर साहब, घुटनों की सुरक्षा के लिए बुजुर्गों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी जी, देखिए मेनली ज्यादातर ओल्ड एज के पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम रहता है
1: जी,
0: और विटामिन डी भी कम रहता है, तो ओल्ड एज के लोग भी अपना डाइट बैलेंस लें, ताकत पूरी रहे, कैल्शियम और विटामिन लें, और सबसे मुख्य चीज तो ये है कि चोट ना लगे, चोट से बचे, तो एक अपना स्टिक लिए रहें, हाथ में स्टिक लिए रहें, जितना वॉक इनसे हो पा रहा है वो करें, और चोट इनको ना लगे ये ध्यान रखें। इसके अलावा कोई और भी जो अगर रोग है जैसे डायबिटीज है या अगर यूरिक एसिड इनका हाई है तो उसका भी इलाज लें
1: जी। बहुत अच्छी बात की आपने। और कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह के घुटनों के दर्द की परेशानी का सामना न करना पड़े?
0: वेट पे कंट्रोल रखें, पौष्टिक खाना खाएं, खासतौर से दूध इत्यादि का करें सेवन, जिससे अपने को कैल्शियम और विटामिन डी मिले, और घुटने में जैसे ही आपको दर्द या कुछ भी चीज शुरू हो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको कंसल्ट करें और उसकी एडवाइस माने
1: जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजभिये के बात सुनी। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर अपने पत्रों के माध्यम से। और आइए, अब बारी एक प्यारे से गीत की है, तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, बायो हैकिंग एक ऐसी ही तकनीक है जो अपने शरीर और दिमाग की कार्य क्षमता, स्वास्थ्य और ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। विज्ञान, तकनीक और जीवन शैली में बदलाव की ये एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य लक्ष्य पोषण, नींद, व्यायाम और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उम्र को बढ़ाना और समग्र कल्याण करना है। बायो हैकिंग के मुख्य पहलू में शामिल हैं जीवन शैली में बदलाव, पोषण में सप्लीमेंट का सही उपयोग, एडवांस मेथड से सही पहचान और इलाज। बायोहैकिंग इस सिद्धांत पर काम करता है श्रोताओं कि हम अपने शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को हैक कर स्वयं के स्वास्थ्य पर नियंत्रण रख सकें, जिसमें डेटा से विश्लेषण करके छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रदर्शन को उच्चतम स्तर पर लाया जा सके और फिर हम स्वस्थ और प्रसन्न रहकर अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाएं। इस बात के साथ ही आइए एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस समय गर्मी खूब पड़ रही है तो बाहर निकलने से पहले खूब सारा पानी पिएं, खाली पेट ज़्यादा देर तक ना रहें। छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, आम का पन्ना जैसे पेय समय समय पर लेते रहें।

और ख़ुद को हाइड्रेटेड रखें। सीजनल फलों का सेवन करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस आशा के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति दें। अपनी दोस्त दिव्या को स्वीकारें। नमस्कार।

अभी आप स्वास्थ्य दर्पण का लाभ ले रहे थे। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल की बात है।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। पहले सुनिएगा लोक भजन। आज के

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है, प्रस्तुत है लोक भजन।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोक भजन। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रागनी तड़दे की गाई गजलें।

0: संस्कृति का दर्पण। प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड।

0: जेन जी भी है, है ऑल्सो जेन ओल्ड नहीं पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: दोपहर के 2 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ है। आज पूरा भारत आकाशवाणी परिवार सुमन कल्याणपुर को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है और ये गीत श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए है। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।
2: आकाशवाणी के

और लीजिए एक बार फिर से सुमन कल्याणपुर के साथ मोहम्मद रफ़ी को सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म से। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। कुछ और गाने आप सुनेंगे 2:30 बजे आपकी फरमाइश में। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे ही मार दे, मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका ऋण संकल्प और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार वर्तमान न्यायाधीश विवेक रोसिया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बदलाव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने के कारण हुआ है। नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रोसिया मूल रूप से जबलपुर के ही रहने वाले हैं। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 7वें दिन कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहा। इससे तापमान में भी कमी आई है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शाजापुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 34.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और तपती धूप से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में आंधी गरज चमक के साथ बारिश और ओली गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययनरत और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की कल आगरमालवा में बैठक आयोजित की गई। प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के दूरस्थ ग्राम कामती में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए वार्डो में निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे। शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 290 लीटर शराब और बियर जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
1: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1 लाख

0: योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यवसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले

0: के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुँच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? पहला गीत हमने लिया है अप्रैल फूल से, मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। गीत लिखा है असर जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। और हमारे सभी श्रोताओं, आकाशवाणी परिवार और पूरा भारत आज सुमन कल्याणपुर जी को अपनी श्रद्धा

पहला गीत पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, मुरार ग्वालियर से कालीचरण यादव, राजकिरण, दीपक यादव, चांदी यादव, प्रमिला देवी यादव, गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश फरियाद फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। केदार शर्मा ने इसको लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसका संगीत तैयार किया है। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं, इस गीत को पसंद किया है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इसी गीत के लिए हमें चिट्ठियाँ मिली हैं। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले ने। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबैया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इन्होंने पसंद किया है बात एक रात की, फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और एस डी बर्मन ने संगीत दिया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत जब जब फूल खिले, इस फिल्म में मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से ज्योतिषाचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक जैन, नमन जैन, शुभम जैन और सोनागिर दतिया से श्रेयांश जैन, विपुल जैन, इन सभी की पसंद पर। और इसी गीत को पसंद किया है रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

और लीजिए अब आपको सुन पा रहे हैं घर फिल्म में लता मंगेशकर को। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत है आरडी बर्मन का। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं, इस गीत को पसंद किया है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लच्छनपुर से, विश्वनाथ साहू लेवई से, गुलाबदास मानिकपुरी दतरंगी से, भागवत वर्मा ने। आप सभी की पसंद पर घर फिल्म का ये गीत हम आप

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं मुनीम जी फिल्म में सुमन कल्याणपुर को। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और उषा खन्ना ने इसका संगीत तैयार किया है। ग्राम महसबाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुंग धाड़े, वाल्मी धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोडकर। और इसी गीत को पसंद किया है गुजरात नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कावले, नेहा भंडसे, सीमा रूबीहा, फजल पूनम नैनवा और सुषमा सलीम ने। तो आपकी पसंद पर हम ये गीत आपको सुन

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। साधना जैन को नमस्कार। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:58 हुए हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गाँव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारम्भ किया। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विश्व दुग्ध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवार में 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEAdvanced.ac.in वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन ने सांस्कृतिक जगत को समृद्ध किया। और मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

लीजिए एक नजर डालते हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों पर जो कि आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम आपको सुनवाएंगे। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें कुछ चर्चा होंगी, फिल्मी गीत होंगे या आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। शाम 5:33 पर फिल्म संगीत, 6:30 और 8:35 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकेगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। 6:40 पर कार्यक्रम होगा आजकल और प्रादेशिक समाचार दर्शन होगा 6:45 पर। सात बजकर 21 पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा ग्राम सभा। इसमें सुनिएगा लोक रंग, मंडी मौसम और कुछ गीत, विश्व दुग्ध दिवस पर कुछ बातचीत आप सुन सकेंगे। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। रात 9:30 पब्लिक स्पीक, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। रात 10:00 आपकी फरमाइश होगी और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का राग बागेश्वरी में वायलिन वादन आप सुन सकेंगे। इसे एक बार फिर से सुन लीजिएगा, रात 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन आप सुन सकेंगे।

हम आपको याद दिला दें कि रात्रि 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव पर हमारी इस सभा का अब समापन होता है। शाम 5:02 पर मीडियम वेव पर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमारा कार्यक्रम होगा DTH पर।

मध्यम विवेग 188.2 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर लिखे एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रूपये था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 30 जून तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। भोपाल के भारत भवन में वीर भारत न्यास द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय सदानीरा समागम में आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ मंच पर साइप्रस, फिजी और मैक्सिको दूतावास से अतिथि भी मौजूद रहेंगे और वियतनाम के दनांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी को आसमान की तरफ ताकने की आदत हो गई है ना। मन में बस एक ही ख्याल चलता है कि कब घने बादल घिरे और कब बारिश की पहली फुहार इस तपती जमीन को भिगोए। दोस्तों, मौसम के इसी सुहाने इंतजार के बीच आज जून महीने की पहली तारीख है। जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो हमारे मन में एक नई उम्मीद, नए लक्ष्य और नया उत्साह जन्म लेता है। और दोस्तों, आज का दिन तो हम युवाओं के लिए बहुत ही गहरा और बेहद खास संदेश लेकर आया है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस पर, और इसी के साथ चर्चा करेंगे डिजिटल जीवन शैली और इसके बीच हमारे स्वास्थ्य विषय पर। आइए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस रिश्ते की जिससे हमारा वजूद है। एक पिता की उंगली पकड़कर ही हम दुनिया को देखना सीखते हैं। पिता का संघर्ष और उनका अनुशासन ही हमें जीवन की कठिन डगर पर सीधे खड़े रहने का संबल देता है। कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे वैश्विक अभिभावक दिवस पर उससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म मैं ऐसा ही हूँ से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये बेहद प्यारा और आत्मीय गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म मैं ऐसा ही हूँ से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गीत पापा मेरे पापा। गीतकार थे समीर और संगीत निर्देशन था हिमेश रेशमिया का। दोस्तों इस गीत के बोल सीधे दिल को छू जाते हैं। सचमुच पिता का साया जीवन की हर धूप में एक ठंडी छाव की तरह होता है। साथियों आज पूरी दुनिया में वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जा रहा है। वैश्विक अभिभावक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करना है और बच्चों के पालन पोषण में उनके योगदान, त्याग और समर्पण को याद करना है। माता पिता बच्चों के प्रथम शिक्षक, मार्गदर्शक और संरक्षक होते हैं। वे बच्चों को प्रेम, सुरक्षा, संस्कार और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करते हैं। दोस्तों यह दिवस हमें अनेक निस्वार्थ प्रेम और अथक प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। पिता के इस अनमोल साए के साथ माँ की ममता और उसके निस्वार्थ त्याग की भी तुलना नहीं की जा सकती। जब भी हम घर से दूर होते हैं तो माँ की बातें ही हमारा संबल बनती हैं। आइए सुनते हैं फिल्म नीरजा से सुनिधि चौहान की आवाज में ये बेहद भावुक कर देने वाला गीत।

आप सुन रहे थे बेहद भावुक गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म नीचा से। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत निर्देशन था विशाल खुराना का। दोस्तों, माँ के स्नेह की छांव और बचपन का वो दुलार हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत है। माँ के इसी निस्वार्थ स्नेह और जीवनदायी पोषण से जुड़ा है हमारा आज का अगला पड़ाव, जो सीधे हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती से वास्ता रखता है। 201 जून वैश्विक अभिभावक दिवस के साथ साथ पूरी दुनिया में विश्व दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इस दिन की शुरुआत इसलिए की थी ताकि हम सब अपनी सेहत में दूध के महत्व को समझ सकें। दोस्तों, हमारी संस्कृति में, हमारे आहार में दूध का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है, परंतु आधुनिकता के इस दौर में हमारी आदतें कुछ बदल सी गई हैं। याद कीजिए बचपन के वो दिन जब माँ ममता के साथ दूध का ग्लास थमाने के लिए हमारे पीछे भागा करती थी। आज जब हम समझदार और आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो विडंबना देखिए कि हमने उसी जीवनदायी और संपूर्ण आहार को अपने दैनिक जीवन से अनजाने में ही दूर कर दिया है। आजकल हम युवाओं के बीच चाय, कॉफी, तरह तरह के फ्लेवर ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें लगता है कि देर रात तक जागकर पढ़ाई करनी हो या ऑफिस का काम करना हो तो कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स ही सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन विज्ञान कहता है कि ये कृत्रिम साधन हमारे दिमाग को कुछ देर के लिए तो एक्टिव कर देते हैं, मगर लंबे समय में ये हमारे पाचन तंत्र और हमारे सोने के पैटर्न को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। दूध को हमारे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में एक संपूर्ण आहार यानी कंप्लीट फूड माना गया है। इसमें वो सब कुछ है जो हमारे शरीर को चाहिए, उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और पोटेशियम। आज बहुत कम उम्र में हम युवाओं में थकान होना, हड्डियों का कमजोर होना, असमय बालों का सफेद होना जैसी समस्याएं दिख रही हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि हम प्राकृतिक पोषण से दूर हो रहे हैं। दोस्तों, रोज केवल एक ग्लास दूध हमारी इन बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकता है। विशेष रूप से रात को सोने से पहले गुनगुना दूध पीना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे दिमाग को शांत करता है और हमें गहरी और सुकून भरी नींद देता है। तो आज इस विश्व दुग्ध दिवस पर हमें ये समझना चाहिए कि विज्ञापनों के बहकावे में आकर किसी भी फैशनेबल ड्रिंक को अपनाने से बेहतर है कि हम अपने पारंपरिक और शुद्ध पोषण की तरफ वापस लौटें। क्योंकि दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ भविष्य का निर्माण हो सकता है। साथियों, हमारी सकारात्मक सोच और हमारे भीतरी स्वास्थ्य का सबसे सीधा असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है। जब मन में उमंग हो और विचार शुद्ध हो तो आंखों की सजीवता देखते ही बनती है। आंखें सचमुच हृदय का वो द्वार है जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देती है। आइए सुरों के सफर को एक ऐसी रचना से जोड़ते हैं जो सीधे रूह को छू लेती है। सुनते हैं फिल्म माय नेम इज खान से शफकत अमानत अली की आवाज में यह गीत, तेरे नैना।

दोस्तों आप सुन रहे थे शफकत अमानत अली की आवाज़ में गीत तेरे नैना, जिसमें संगीत निर्देशन था शंकर एहसान लॉय का। इस मधुर गीत का सुकून सचमुच मन को शांत करता है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हमारे स्वास्थ्य और हमारी आंखों के सुकून के सामने एक चुनौती खड़ी है। दोस्तों शरीर पोषण की बात तब तक अधूरी है जब तक हम अपनी रोज की आदतों पर बात ना करें। आइए अब रुख करते हैं उस विषय की ओर जो सीधे तौर पर हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी डिजिटल जीवन शैली। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी की ऑक्सीजन बन चुके हैं। सुबह खुलते ही हमारा हाथ सबसे पहले फोन ढूंढता है और रात को सोते समय आखिरी चीज जो हम देखते हैं वो मोबाइल की स्क्रीन होती है। पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, काम वर्क फ्रॉम होम से हो रहा है, दोस्तों से बातचीत मैसेजेस पर हो रही है और मनोरंजन के लिए भी हमारे पास ढेरों ऐप्स हैं। तकनीक ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान और तेज बना दिया है, इस बात में तो कोई राय नहीं, लेकिन इस डिजिटल दुनिया के अति उपयोग ने हमारे स्वास्थ्य के सामने कुछ बहुत गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लगातार कई घंटों तक लैपटॉप पर काम करने और मोबाइल देखने के बाद आपकी आंखों में जलन होने लगती है या सिर भारी हो जाता है? चिकित्सा विज्ञान में इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। इसी तरह जब हम लगातार अपनी गर्दन झुकाकर फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसे डॉक्टर अब टेक्स्ट नेक कहने लगे हैं। इसके कारण बहुत कम उम्र के युवाओं में भी गर्दन और पीठ के दर्द की शिकायतें आम होती जा रही हैं। दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य तो एक तरफ है, लेकिन इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर और भी ज्यादा गहरा है। सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीरें, उनकी यात्राओं की वीडियो देखकर हम अनजाने में ही अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। हमें लगता है कि बाकी सब लोग बहुत खुश हैं, सिर्फ हमारी जिंदगी में मुश्किलें हैं। इस भावना को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है, जो हमारे भीतर एक अनजाना तनाव और चिड़चिड़ापन पैदा करती है। लेकिन साथ ही इस आभासी चमक दमक के कारण खुद को उदास या निराश करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें यह गहराई से समझना होगा कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज किसी के जीवन का पूरा सच नहीं, बल्कि सिर्फ एक चुनिंदा और सजाया हुआ पल होती है। कैमरे के पीछे हर इंसान के अपने संघर्ष और अपनी चुनौतियां होती हैं। इसीलिए किसी और की रील्स को देखकर अपनी रियल जिंदगी को कमतर आंकना बिल्कुल सही नहीं है। आपकी जीवन यात्रा अनूठी है और आपकी रफ्तार आपकी अपनी है। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी स्क्रीन को मत सौंपिए, क्योंकि आपका वास्तविक जीवन इस वर्चुअल दुनिया से कई ज्यादा सुंदर और मूल्यवान है। लेकिन साथियों इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें तकनीक का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज के समय में तकनीक से दूर होना व्यवहारिक नहीं है। हमें बस एक चीज सीखनी है और वो है संतुलन। तकनीक हमारी सुविधा के लिए बनी है, हमें तकनीक का

नहीं बनना है। इस संतुलन को हम अपनी दिनचर्या में कुछ बहुत ही आसान और व्यवहारिक नियमों से शामिल कर सकते हैं। जैसे कि पहला नियम है 20-20-20 का नियम। जब भी आप कंप्यूटर या मोबाइल पर लगातार काम कर रहे हों, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूर रखी किसी भी प्राकृतिक चीज या दीवार को देखें। इससे हमारी आंखों की मांसपेशियों को बहुत आराम मिलता है। दूसरा नियम है नो स्क्रीन जोन बनाना। अपने घर में कुछ जगह और कुछ समय ऐसा तय कीजिए जहां मोबाइल पूरी तरह वर्जित हो। जैसे भोजन करते समय फोन बिल्कुल दूर होना चाहिए। जब हम फोन देखते हुए खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान भोजन पर नहीं होता, जिससे हमारे शरीर को उसका पूरा पोषण नहीं मिल पाता। तीसरा और सबसे जादुई नियम है डिजिटल सूर्यास्त, यस डिजिटल सनसेट। रात को सोने के समय से कम आधा या एक घंटा पहले अपने फोन और लैपटॉप को खुद से दूर कर दीजिए। फोन से निकलने वाली जो कृत्रिम रोशनी है वो हमारे दिमाग को सोने का सिग्नल नहीं देती, जिससे हमारी नींद अधूरी रह जाती है। जब आप सोने से पहले फोन से दूरी बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी नींद कितनी गहरी और सुकून भरी हो गई है। साथियों, सोशल मीडिया पर हमारे कितने फॉलोअर्स हैं या हमारी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए हैं, यह बात से कई कम महत्वपूर्ण है असल जिंदगी में हमारे चेहरे पर कितनी मुस्कान है और हमारे अपनों के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा है। वर्चुअल दुनिया के इस मानसिक दबाव से थोड़ा विराम लेकर जब हम वास्तविक दुनिया की सादगी को अपनाते हैं ना दोस्तों, तो दिल अपने आप मुस्कुरा उठता है। आखिर यह जीवन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जिसका हमें हर पल आभार मानना चाहिए। आइए सुनते हैं हम युवाओं के दिलों में जीवन के प्रति एक नया उत्साह जगाता फिल्म डियर जिंदगी से ये बेहद खूबसूरत और सकारात्मक गीत लव यू जिंदगी।

दोस्तों, कितना खूबसूरत है ना ये एहसास। जब हम इस प्यारे से जीवन का आभार मानते हैं तो हर चुनौती आसान लगने लगती है। अपनी सेहत, अपने विचारों, अपनी जीवन शैली से प्यार करना ही वास्तविक जीवन है। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आइए जानते हैं आज की रोजगार सूचना। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। 10वीं कक्षा के साथ ITI प्रमाण पत्र या संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा अनिवार्य है। आवेदन 15 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून है। और अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता को इजाजत। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पर युवाओं की तरंग, युवाओं की आवाज, कार्यक्रम युववाणी। नमस्कार।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

रोशन के संगीत निर्देशन में साहिर का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं। दिल ही तो है फिल्म का ये गीत, गायिका सुमन कल्याणपुर।

0: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल।

खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
0: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 30 जून तक चलने वाला ये अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। भोपाल के भारत भवन में वीर भारत न्यास द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित

0: सात दिवसीय सदानीरा समागम में आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ मंच पर साइप्रस, फिजी और मैक्सिको दूतावास से अतिथि भी मौजूद रहेंगे। और राजधानी भोपाल में मौसम सुहाना हो गया है, यहाँ तेज हवाओं के साथ बादल छा गए हैं। मौसम विभाग ने आज झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
5: I am confident that this comprehensive agreement
6: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
5: of our shared future.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lai held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides express interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. He said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
4: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
7: Mr. Misri said, Myanmar sits at the confluence of India's neighborhood first, Act East, as well as Mahasagar and Indo-Pacific policies. The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening. He is also scheduled to visit the Light and the Lotus, Relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the National Capital. President Liang will travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that CEPA is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust.
5: I am confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. SEPA is a blueprint of our shared future.
7: Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second India-Australia Defence Minister's dialogue in New Delhi, Defence Minister Rajnath Singh and his Australian counterpart Richard Marles stressed the importance of freedom of navigation and overflight, unimpeded trade and lawful use of the seas in accordance with the international law. The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. A bench of Justices P.S. Narasimha and Arvind Kumar said the National Testing Agency is already facing multiple challenges after the cancellation of the examination. The court posted the matter for hearing on the 27th of next month. The Trinamool Congress TMC has expelled two legislators, Sandeepan Saha and Ritbrata Banerjee, for anti-party activities, absenteeism from key meetings and public remarks critical of the party leadership. The move comes amid internal turmoil following TMC

आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है सदाबहार गीत का। सदाबहार गीत में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन च नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। अनेन भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने प्रतिशतं 98 मितं विपणौ शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षपूर्तौ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अनया योजनया पथव्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतन मंत्रिभ्यः मंत्रिमंडले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउ लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमा भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योगमंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं संधिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रीय दैनिक पत्रे प्रकाशिते लेखे श्रीगोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता संधेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशतं 98 मिता शुल्कमुक्ति कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। श्रीमोदी अस्याः योजनायाः प्रशंसां विधाय अवदत् यत् PM स्वनिधि योजनया प्रतिभूतिं विना ऋणप्रदानं वित्तीय समावेशनम् अपि च विकासस्य नवीन अवसराः प्रदत्ताः, येन लक्षशः पथविक्रेतिजनानां जीवने उन्नतिः समागता। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारम् अकरोत्। राज्यपालः RN रविः कोलकातायाः लोकभवने आयोजिते समारोहे 35 नूतनमंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाः च

डिस्को डांसर फिल्म का ये गीत था, बप्पी लहरी का गाया हुआ। अनजान ने गीत के बोल लिखे थे और धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज का विषय है एनडीए सरकार के 12 साल, मोदी सरकार के निर्णयों ने बदली देश की तस्वीर, आम लोगों की तकदीर। आलेख है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने कार्यकाल के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे कर रही है। पिछले 12 वर्षों के दौरान देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार ने खुद को सिर्फ सत्ता संभालने तक सीमित न रखकर योजनाओं और आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए देश की पूरी तस्वीर बदलने का काम किया है। इन नीतिगत बदलावों ने सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, जिससे लास्ट माइल डिलीवरी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की व्यवस्था बेहद मजबूत हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एवं अन्य धार्मिक कार्यों में सरकार की सहभागिता से जनता में नई धार्मिक चेतना का संचार हुआ है। वैसे तो सरकार के सभी कार्यों का जिक्र करना असंभव है, लेकिन देश और समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाले प्रमुख क्षेत्रों और योजनाओं का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनका सशक्तिकरण है। लंबे समय तक महिलाओं को केवल एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें नीतियों और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आज महिलाएं स्वतंत्र रूप से फैसले लेने वाली एक निर्णायक मतदाता बनकर उभरी हैं। महिलाओं को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इसके साथ ही सुरक्षित मातृत्व अभियान और मातृवंदन योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं की देखभाल की गई और मातृत्व अवकाश की अवधि में वृद्धि की गई। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को समाज में एक नया अधिकार और सम्मान दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने समाज में बेटियों की शिक्षा और उनके प्रति नजरिए को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सरकार ने केवल सामाजिक सुधारों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि युवाओं और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी कई योजनाएं लागू की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिए गए। चाय की दुकान, बुटीक, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे छोटे व्यवसाय करने वालों को इससे बड़ा सहारा मिला और युवा नौकरी ढूंढे वालों से नौकरी देने वाले बन गए। वहीं टैक्स छूट, आसान रजिस्ट्रेशन और फंडिंग सपोर्ट के दम पर आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां करोड़ों युवा अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम की पहल से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिला। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर में भारी निवेश आया, जिससे भारत आज दुनिया का एक प्रमुख मोबाइल मैन्युफैक्चरर देश बनकर उभरा है। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोरोना महामारी के संकट के बाद रेहड़ी पटरी और पटरी दुकानदारों को अपना व्यवसाय दोबारा शुरू करने के लिए बिना गारंटी का लोन दिया गया, जो बेहद मददगार साबित हुआ। सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए कई जन कल्याणकारी मोर्चों पर काम किया, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों गरीबों के जीरो बैंक बैलेंस खाते खोले गए, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया है। कैंसर और हार्ट जैसी गंभीर सर्जरी के खर्च से बचकर लाखों परिवार कर्जदार होने से बच गए, जिससे मृत्यु दर में कमी आई और लोगों का जीवन खुशहाल हुआ। वहीं स्वच्छ भारत मिशन एक सफाई अभियान से बढ़कर सामाजिक आंदोलन बन गया। देश भर में करोड़ों शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ। शहरों के बीच स्वच्छता की होड़ शुरू हुई और रसूखदार लोगों से लेकर आम जनता तक में जागरूकता आई। जल जीवन मिशन अभियान से महिलाओं को पानी के लिए करने वाली कड़ी मेहनत से मुक्ति मिली और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों में भी भारी कमी आई। वहीं पीएम आवास योजना ने बेघर लोगों और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्के मकान का मालिक बनाया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने के लिए हर साल उनके खाते में 6,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के भीतर सरकारी सेवाओं और भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और तेज बना दिया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत को डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में वैश्विक लीडर बना दिया है। आज रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े बड़े मॉल तक क्यूआर कोड के जरिए भुगतान ले रहे हैं। इन 12 वर्षों का सफर ये साफ करता है कि नीतियां अगर सही नीयत से लागू की जाएं, तो वे देश की तकदीर बदल सकती हैं। आजकल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमाज। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है गेहूं उपार्जन के संबंध में। हाल ही में संपन्न हुई समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा लगभग 14 लाख किसानों से गेहूं खरीदी कर उल्लेखनीय रिकॉर्ड स्थापित किया है।
1: मैं मध्य प्रदेश के किसानों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। ऐसे में जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है। मध्य प्रदेश में पहली बार लघु अर्थात छोटे किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, इनके गेहूं को पहले खरीदने का हमने पहली बार निर्णय किया और उसका परिणाम लिखा कि लगभग 32.72 लाख मेट्रिक टन छोटे किसानों का हमने पहले खरीदी की, बाद में मध्यम और उससे बड़े श्रेणी के किसानों का गेहूं खरीदने का काम किया है। लगभग 14.25 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदने का काम संपन्न हुआ है। अर्थात जो मेरी जानकारी में है, अब हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर जिन्होंने पंजीयन कराया ऐसे सभी भाई बहनों का गेहूं हमारे अपने गोडाउन तक पहुंच चुका है। ये भी मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति और विश्व में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने ये गेहूं खरीदी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसानों के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और ये तो खास बात है, ये इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए अभी तक हमने जो मुझे बताया गया लगभग 24,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का भुगतान प्रेषित किया गया है। इसका मतलब हमारे अपने किसानों के लिए समर्थन मूल्य 2585 और 40 रुपया बोनस दोनों मिलाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं हमने अपने किसानों से खरीदा गया है।
0: हमारी दूसरी खबर विदिशा से है, जहां रबी विपणन वर्ष 2026-27 में 174 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर जिले में 68,200 किसानों से 651,836 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। पेशे विदिशा से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश के कृषि प्रधान विदिशा जिले में रबी विपणन वर्ष 26-27 में 174 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थित रूप से खरीदी की गई है। जिले में 68,200 किसानों में से 651,836 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा उपार्जन कार्य की निरंतर समीक्षा करने से किसानों को सुविधाजनक और पारदर्शी व्यवस्था मिली है। जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुबाई ने बताया कि गेहूं विक्रय हेतु जिले में कुल पंजीकृत किसानों में से 74,621 किसानों अर्थात 90% किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय किया है। 28 मई तक गेहूं की खरीदी होने के पश्चात उपार्जित गेहूं के परिवहन का कार्य अभी भी जारी है। अब तक खरीदे गए कुल गेहूं में से 5,77,598 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया जा चुका है, जो कुल खरीदी का लगभग 88% है। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1,470 करोड़ रुपए EPO के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जिले में बारदाने की आपूर्ति निरंतर और पर्याप्त होने से उपार्जन केंद्रों से गेहूं का परिवहन आसान हुआ है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
0: हमारी अगली खबर है शिवपुरी से, जहां किसान ग्रामीण और फार्म हाउस संचालक अब तेजी से होम स्टे डेवलप कर रहे हैं। पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश, खाना और सस्ती सुविधा देने के लिए ये होम स्टे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
3: शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर की मौजूदगी और पड़ोसी जिले शिवपुर में चीतों के आने के बाद जिले में होम स्टे टूरिज्म को पंख लग गए हैं। शिवपुरी जिले के किसान, ग्रामीण और फार्म हाउस संचालक अब तेजी से होम स्टे डेवलप कर रहे हैं। पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश, देसी खाना और सस्ती सुविधाएं देने के लिए ये होम स्टे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। फिलहाल जिले में 4 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। इनमें हाथौद ग्राम में चल रहा होम स्टे पर्यटकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन होम स्टे में रुकते हैं। इसके बाद शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी के साथ साथ सिंधिया घराने की ऐतिहासिक छतरियाँ, भदिया कुंड और भूरखो जैसे प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। जिले में कई होटल पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब होम स्टे का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ग्राम हाथौद में स्थित फार्म स्टे बैरागढ़ लिविंग के संचालक जसमीत ग्रेवाल ने बताया कि हमारे यहाँ पर कई देसी विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि हमारे देसी स्थानीय व्यंजन जैविक खेती से तैयार अनाज व सब्जियों से तैयार किए जाते हैं। जिला पर्यटन प्रबंधक देव सोनी ने बताया कि शिवपुरी में होम स्टे को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मकसद पर्यटकों को होटल के मुकाबले कम रेट में बेहतर और प्रामाणिक सुविधाएं देना है। उन्होंने बताया कि साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। इन होम स्टे के संचालन से अब युवाओं को गाइड, रसोईया और हाउस कीपिंग का रोजगार भी मिल रहा है। शिवपुरी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और होम स्टे इस दिशा में नया अध्याय लिख रहे हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अगली खबर है सीधी जिले से, जहां जिले के सेवारत सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक नजीर पेश की है। ज्यादा जानकारी दे रहे सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: देश की सुरक्षा में निरंतर समर्पित सैनिक सीमाओं पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अक्सर अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने में नाकाम रहते हैं। इन तमाम तथ्यों को लेकर जिला प्रशासन सीधी ने एक अभिनव पहल की है। हेलो सीधी, जय जवान एक समर्पित जिला स्तरीय सहायता एवं शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से सैनिक, उनके परिजन सीधे जिला प्रशासन विकास से संपर्क कर सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी इन उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 810-355-0045। व्हाट्सएप नंबर है 810-355-0045। आधिकारिक वेबसाइट cd.nic.in। हेलो सीधी, जय जवान केवल शिकायत निवारण परियोजना नहीं, बल्कि सैनिकों के सम्मान, त्वरित सेवा वितरण एवं संवेदनशील प्रशासन का एक अभिनव मॉडल है। आने वाले समय में जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर विकास की यह सोच दर्शाती है कि तकनीकी जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के समन्वय से विशेष वर्गों के लिए प्रभावी और सम्मानजनक सेवा तंत्र विकसित कर सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।
0: हम चलते हैं सीहोर जिले की तरफ, जहां इन दिनों जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत किया गया नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
5: सीहोर जिले में इन दिनों जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत जिले का नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के वातावरण में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर बाला गुरु के और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्चना यादव के निर्देश पर जिले में नवाचार के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। संकुल अंतर्गत ऐसे शालत्यागी बच्चे जो किन्हीं कारणों के चलते शाला में प्रवेश से वंचित रह गए हैं, अक्षर साथी के माध्यम से शाला में प्रवेश संबंधी कार्रवाई पूर्ण कराई जा रही है। इससे अक्षर साथी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन बच्चों के गैप्स को दूर करने के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही है। जिले में गृह संपर्क अभियान के माध्यम से बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शाला खुलते ही ये शाला में नियमित रूप से आना प्रारंभ करें एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त कर सकें। जिले में सामाजिक चेतना केंद्र के माध्यम से ग्रामीण जनों एवं अपने साथियों को ड्रॉप आउट बच्चों को शाला में प्रवेश हेतु प्रेरित किया जा रहा है। सरकारी शिक्षकों के द्वारा घर घर जाकर माताओं से सरकारी शालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के प्रयासों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही जिले में ड्रॉप आउट बच्चों को शाला से जोड़ना, शाला की पढ़ाई पूरी होने पर कॉलेज से जोड़ना, ड्रॉप आउट बच्चों और युवाओं को शिक्षा से जोड़ने प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस बारे में जिले के DPC श्री RR उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि
6: जिले में चलाया जा रहा अभियान 2.0 शिक्षा के संबंध में बताना चाहता हूं कि

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
0: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट
2: खुशखबरी जी हाँ आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक जी हाँ आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
3: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

मुनी आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमार संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। पहले आज की सभा के शेष प्रसारण की जानकारी। शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा में आज का आकर्षण होगा लोकरंग। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में रात्रि 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण का प्रसारण करेंगे। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद आपकी फरमाइश कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे पूरी करेंगे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया ताल बागीश्री आप सुनेंगे। ये थी जानकारी आज के इस प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 7:20 पर दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल होगा। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा सुनिएगा सुबह 8:30 पर। आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरंजनी सभागार में आयोजित संगीत सभा में कव्वाली गायन के संपादित अंश आप सुनिएगा सुबह 9 बजे। कलाकार होंगे मुनव्वर मासूम और साथी। सुबह 9:30 पर परिचर्चा होगी हिंदी में आत्मकथा लेखन। प्रतिभागी होंगे शशांक, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव और राजेंद्र शर्मा। जिले की चिट्ठी अपने निर्धारित समय सुबह 10 बजे प्रसारित होगी। कुछ बातों के साथ फिल्मी नगमे गीत सागर प्रोग्राम में सुबह 10:05 पर प्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनिएगा रामदास मुंगरे का ख्याल गायन, राग होगा भैरव। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में 1 जून 2026 को ग्राम रामसिया जिला रायसेन में आयोजित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के उद्घाटन की रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के। अब विवरण आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण का। कल दिन में 11 बजे फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे का प्रसारण होगा। आपकी फरमाइश मध्यान्ह 12 बजे और दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां का 7वां भाग आप सुनेंगे 12:30 पर। महिला कार्यक्रम दिन में 1 बजे प्रसारित होगा। दिन में 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम। दिन में 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6 बजे प्रसारित करेंगे। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण का प्रसारण करेंगे रात्रि 8 बजे। उर्दू प्रोग्राम कहकशा में आबशारे गजल आपकी नजर करेंगे रात 9:30 पर। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रामदास मुगरे का ख्याल गायन होगा, राग होगा गौड़ मल्हार। ये थी जानकारी आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपको पुनः याद दिला दें आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरंजनी सभागार में आयोजित संगीत सभा कार्यक्रम में कव्वाली गायन के संपादित अंश आप सुनिएगा सुबह 9 बजे। कलाकार होंगे मुनव्वर मासूम और साथ।

0: तो कल सुनिएगा सुबह 9 बजे। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान रायसेन से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले। और भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश और मौसम हुआ सुहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रमासिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान एक महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
1: मेरे किसान भाइयों, आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है, लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है। आज मैं ये कहने आया हूँ कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर लो कितना डालना है।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और नौ निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। किसानों को मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जल संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की पहचान करना भी सिखाया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में आज उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों से सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को आज समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
2: हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके। और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी।
0: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे

0: बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिस पर आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। न्यायाधीश विवेक रुसिया मध्यप्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की प्रमोशन के बाद उन्हें स्थान मिला है। सचदेवा को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। जस्टिस विवेक रुसिया जबलपुर के रहने वाले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प, उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार गौ संरक्षण, गौशालाओं के निर्माण और डेयरी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हर दिन 6,50,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 8वें दिन आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में भी ढलती शाम में अचानक बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक घुल गई। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तापमान में तेजी से गिरावट आई। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में भी तेज आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। आगर मालवा जिले में आज दोपहर तेज धूल भरी आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। पन्ना में कल अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना में आंधी और गरज चमक के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पन्ना में आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशे से दूर रहने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। झाबुआ के रामा में कल विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शहर के 4 नलकूपों का जनसामान्य को जल आपूर्ति के लिए 10 दिन के लिए अधिग्रहण किया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार के तहत कलेक्टर कार्यालय में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अशोकनगर में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 15 जून तक किए जा सकते हैं। राजगढ़ जिले में रेशम कृमि पालन के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते हैं। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने संबल योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने और जर्जर स्कूल भवनों को ठीक करने के निर्देश दिए। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 3 जून को जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो no.

0: लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

जय जवान जय किसान चौपल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को रजनी बहन की राम राम। और देखो भैया बहन, अपन देख ही रही हैं कि अब ये मौसम चल रहा है तो गर्मी को, लेकिन भैया पानी बरस गया तो भैया कितने ठंडक सी हो गई और कितने अच्छा लग रहा है कि भैया अपन देख ही रहे थे कितने गर्मी हो रही थी, है ना। या नहीं भैया गर्मी अपे का भैया पे चरम सीमा पे हती, भैया भागवत का पानी बरस गया तो कितने ठंडक सी लग रही है। तो भैया आज का है कि एकदम मौसम बदल गया है, और भैया जो बदला तो भाई मौसम में अपन को अपने स्वास्थ्य की अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि भैया अपने घरों के आसपास साफ सफाई को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भैया मच्छर को प्रकोप ज़्यादा हो जाओ थे न भाई पानी बरस जाओ तो। और भैया अपन को अपने घरन के संगे संगे भैया आस पास की जगह है तो भैया मैंने भी साफ सुथरा रखना है, जो है कि कूड़ा करकट इतने फेंक दा होते फेंक दा भैया कचरा कूड़ा करकट अपन को सही जगह पर सही कूड़ेदान में फेंकना है। और देखो भैया अपन घरों से निकलने वाले पानी को अपन को सही निकास करना चाहिए, पानी में रुको भाव पानी नालियन को भैया का है कि मच्छर पनपा थे बन में, तो भैया जो मक्खी मच्छर होते तो भैया बीमारियाँ सुई फैलाते हैं ना, तो भैया अपन को जो बातन को ध्यान रखना है और अपन भैया जी साफ सफाई को यानी कि विशेष ध्यान रखना है। और भैया अपन को संतुलित भोजन नहीं करना चाहिए, अपन को ताज़ा भोजन खाना चाहिए हैं, और भैया पानी को छान के भैया स्वच्छ जल पीना चाहिए। और भैया अपन जो पालतू पशु हैं तो भैया बेजुबान होते हैं तो इनको भी अपन को विशेष ध्यान रखना है, इनकी देखभाल भी अच्छे से करना है जैसे भैया बेबी स्वस्थ रह सके, है ना। तो भैया अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। देखो भैया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो एक महत्वपूर्ण पहल है जी को मुख्य उद्देश्य जो है कि भैया हर खेत को पानी सुनिश्चित करना है, जहाँ से किसान भैयान को खेती में सिंचाई करवे के लाने लागत कम करवे और पानी की बर्बादी से रोकवे के लाने ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों पे भारी सब्सिडी 45% से भैया 80% तक प्रदान करी जाते हैं, तो भैया जहाँ से हर खेत को पानी मिल सके और भैया प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर के मंत्र के संगे भैया 2015-16 में शुरू करी गई थी। भैया ये योजना सिंचाई कवरेज को बढ़ाना जल उपयोग दक्षता में सुधार करत है और कृषि उत्पादकता बढ़ावे के लाने जल संचयन और प्रबंधन को मजबूत करना है। और देखो भैया बहनों जय योजना के माध्यम से सिंचाई कवरेज को बढ़ाना है, जहाँ भैया अपन देखा थे कि अपनी कछु वो जमीन है भैया तो पानी की वो रहती परेशानी ताकि भैया अभी तो बरसात का मौसम आए हुआ है तो भैया बरसात में तो अपने सब जगह भैया अपनी खेती किसानी हो जाते, लेकिन भैया अपन देखा था जब रवि की फसलन को टाइम होते तो अपन कहा भैया जितने पानी जित कुआ ट्यूबवेल है तो भैया अपन वे खेतन में अपन जो है खेती कर पाते हैं और अपने जो और खेत हैं भैया वहाँ तक पानी की भैया पानी से वंचित रहे तो भैया वहाँ में खेती नहीं कर पाते। तो भैया बिन खिलाने सरकार ने जो बहुत ही अच्छी भैया जी प्रधानमंत्री ने कृषि सिंचाई योजना भैया शुरू करी गई है, जहाँ से भैया अपन कम पानी में भैया अपन फसल उत्पादन कर सकते हैं। और भैया जहाँ में जल संरक्षण वाटर शेड विकास और वर्षा जल संचयन के माध्यम से स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा सोई देते हैं, यानी कि भैया बरसात के मौसम को पानी को भैया

तो करके भैया वहाँ को संरक्षण करके वहाँ को सही समय पे अपन खेती में उपयोग कर सकते हैं। तो देखो भैया बहनों, जा योजना से अपन को बहुत ही लाभ सोई मिल सकते हैं। जैसे भैया सूक्ष्म सिंचाई पे अनुदान, ड्रिप और स्प्रिंकलर छिड़काव सिंचाई प्रणाली स्थापित करने पे किसान भैया को उनकी श्रेणी के अनुसार 45 से 80% तक की आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी दी जाती है। और भैया जो जल स्रोत निर्माण, नए नलकूपों को होते हैं, समर सेवल तालाब बनवावे या भैया कुआ खुदवावे के लाने भी जय योजना के तहत वित्तीय मदद या अनुदान को प्रावधान सुई मिला थे। तो भैया जय योजना कितने अच्छी है, जहाँ से अपन भैया अपन जो कुआ खुदवान चाहते हैं, कौन भैया खेती बाड़ी के लाने है ना, या भैया नलकूप या ट्यूबवेल लगवाना चाहते तो भैया जगह के लाने भी अपन को सरकार मदद दे रही है। और भैया आधुनिक तकनीकी आधुनिकीकरण से कमान क्षेत्र विकास उप योजना के तहत नहरों और जल वितरण के नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है, जैसे पानी को व्यर्थ होवे से बचा सकें। तो भैया बहनों, अपन को सरकार इतनी सहायता प्रदान कर रही है, तो काहे ना जाको लाभ लें जाए योजना को। और अपने खेत ऐसे हैं जिनमें पानी की समस्या से अपन माह में फसल नहीं उगा पाते, तो भैया जहाँ से सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पे अनुदान से अपन अपने खेत में फसल उगा सकते हैं और भैया लाभ ले सकते हैं ना। तो भैया जहाँ से कहा है कि अपन कम पानी में अच्छी फसल हो सके, तो भैया बहनों जय योजना को अवश्य लाभ लेना है। और जय योजना में आवेदन करवे खिलाने अपने नजदीकी कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग या सामान्य सेवा केंद्र CSE सेंटर के कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ते हैं, उतरी जाओ थे जाना है। और भैया जैसे भैया पर जरूरी दस्तावेज हैं बेनु के लाने, अपन को आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज, खसरा खतौनी पहचान प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र या भैया निवास प्रमाण पत्र, और अपने बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी और DBT के माध्यम से राशि प्राप्त करवे के लाने पासपोर्ट आकार को भैया फोटो की जरूरत होती है। तो भैया ये जरूरी दस्तावेज को होना बहुत ही जरूरी है, जैसे भैया पंजा योजना के लाने आवेदन कर सकते हैं और अपन को जा योजना को लाभ मिल सकते हैं। तो भैया जी बहुत ही अच्छी योजना है, जहाँ कोई अवश्य लाभ लेना चाहिए। और देखो भैया अपन चर्चा तो और भी करेंगे, लेकिन भैया जा से पहले अपन कछु भैया मनोरंजन सुई कर लेते हैं। और भैया मनोरंजन के लाने अपन सुनाते हैं जी बढ़िया से लोकगीत चीखों का अभाव है, द्वारका प्रसाद कुशवाहा।

भैयारो अब अपन सुन रहे हते द्वारका प्रसाद कुशवाहा को गा भाव जे लोकगीत, और जे लोकगीत हमें भैया बहन को जरूर पसंद आ होगो। और देखो भैया बहनों, अब अपन चर्चा करन जाए। देखो भैया, अपन रहते गांव में, और भैया गांव में अपन करते हैं खेती किसानी, और भैया संगे अपन पशुपालन भी व्यवसाय करत रहते हैं, जिसे भैया पा कहा है कि अपन जीवन यापन होते रहते हैं, खर्चा पानी चलत रहते हैं भैया। तो भैया और भी भैया कृषि से ही और कछु उद्योग होते हैं जी को भैया अपन अपना के भाई आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो भैया जी कौन कौन से उद्योग हैं, तो भैया जई बात को जानवे के लाने अपन सुनते हैं जे भेंटवार्ता जी को। विषय है आमदनी बढ़ाने में सहायक कृषि आधारित।

0: विभिन्न उद्योग और जा विषय पे जानकारी दे रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया और इनसे बात कर रहे हैं श्री एसएस चौधरी। तो भैया सुनाते हैं जी भेंट वार्ता और भैया जी भेंट वार्ता पुनः प्रसारण करी जा रही है।
1: किसान भाइयों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़े और इसके लिए हमारे पास जो भी खेती के साधन हैं उनका भी हम भरपूर उपयोग करते हैं, चाहे तो खाद बीज हो, जल संसाधन हो, उत्तम किस्म के बीज हो या पौध संरक्षण के उपाय या फिर सुधरे कृषि यंत्र, और ये हमारी खेती को आधुनिक बनाने में मदद करते हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि खेती से जब हमें 12 महीने काम नहीं मिल पाता है तब सलाह दी जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा कि यदि हमको 12 महीने अपनी आमदनी बढ़ाना है तो खेती के साथ साथ कृषि आधारित बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। तो कृषि आधारित उद्योगों से कैसे आमदनी बढ़ सकती है, इसी संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे कार्यक्रम में है श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया, सहायक संचालक कृषि, कृषक प्रशिक्षण केंद्र शिवपुरी। तो चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार।
1: हम जानना चाहेंगे कि ये कृषि आधारित उद्योग, इनका आज क्या महत्व है?
2: उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिससे प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल संवर्धन किया जाता है। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, महिलाओं के लिए भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना करके किसानों के लिए मूल सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में उभरने की व्यापक संभावना है। किसान भाइयों, आज हम काफ़ी उत्पादन खेती से प्राप्त करने के बाद भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें कृषि आधारित लघु उद्योगों के माध्यम से अपने उत्पादन का अधिक लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत हम कर सकते हैं। इस दिशा में कृषि आधारित लघु उद्योग काफ़ी सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पाद, दूध, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं
1: जी। अब जैसे आपने बताया कि डेयरी के उत्पाद हैं, इसके अलावा फल सब्जियों का प्रसंस्करण कर सकते हैं
2: जी,
1: पैकेट बंद भोजन है और पेय पदार्थ। अब बात आती है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं
2: जी,
1: तो ये इसमें किस तरह से सहायक हैं?
2: लघु उद्योग है तो सहायक कृषि फसलें, खाद्यान्न फसलें इसमें है गेहूं, चना और मक्का। गेहूं फसल बाजार में सीधे बेचकर गेहूं की ग्रेडिंग, पैकिंग, पिसाई करके और आटे की पैकिंग कर जो गेहूँ 15 रुपये किलो में बिकता है, अगर उसको हम पैकिंग करके बेचेंगे तो निश्चित रूप से 25 से 30 रुपये किलो में आसानी से बेचा जा सकता है।
1: और जो दलहनी फसलें हैं?
2: दलहनी फसलें हैं जिसमें चना, मूंग, उड़द, अरहर और मसूर, इनके सीधे न बेचकर इसका स्वरूप बदलकर उनका मूल संवर्धन प्राप्त करने के लिए दाल बनाने वाली मशीनें लगाकर और दाल तैयार कर विक्रय करें तो अधिक आय प्राप्त होगी
1: जी। जी,
2: तिलहन की फसलें हैं इसमें सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन से सोयाबीन का पनीर, सोयाबीन का दूध, सोया आटा और इनका उत्पादन कर उपयोग लगातार व्यापार करने के लिए हम कर सकते हैं और रोजगार भी मिलने से इस धंधे के माध्यम से भी किसान अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ साथ उद्यान की फसलें हैं, उद्यान की फसलों में मसाले वाली फसलें हैं जिनमें धनिया, मेथी, जीरा, सौंफ। इसमें FIG ग्रुप, फार्म इंटरेस्ट ग्रुप, किसान कृषक रुचि समूह हैं, इन समूहों के माध्यम से अगर हम धनिया की ग्रेडिंग और पिसाई करके पैकिंग करके बाजार में अगर बेचा जाता है तो इससे किसान भाइयों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। जो धनिया 40-50 रुपये किलो में सामान्यतः बिकता है, अगर हम इस संवर्धन करके बेचेंगे तो निश्चित रूप से 150 से 200 रुपये तक इसका लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। इसके साथ में उद्यान की फसलों में अचार वाली फसलें हैं, इसमें है आम, आंवला, नींबू, करौंदा। आंवला का अचार, आंवला का मुरब्बा, आम का अचार, नींबू करौंदा का अचार का छोटा उद्योग लगाकर इनका व्यापार किया जा सकता है, इससे भी किसान भाइयों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ कुछ उद्यान की सब्जी वाली फसलें हैं जिनमें टमाटर है, मिर्ची है, आलू है। शिवपुरी जिले में टमाटर के उत्पादन को देखते हुए टमाटर की प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण कर मूल संवर्धन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें टमाटर सूप, टमाटर जैम, टमाटर जेली, टमाटर पाउडर

0: से उत्पादों का विक्रय करके अपनी आमदनी को किसान भाई बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार मिर्ची के अचार और आलू के चिप्स लगाने का छोटा उद्योग लगाकर किसान भाई इनका अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। अच्छा, रेशम कीट पालन की भी संभावना है?
0: बिल्कुल संभावना है सर। इसमें रेशम कीट में इसमें ये रेशम एक उद्योग कृषि आधार पर आधारित उद्योग है और इसमें 85 लाख इस भारत देश के लोग इससे रेशम उद्योग से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और इसमें जो कीट है लेपिडोप्टेरा कीट है जिससे कोया बनता है, लेकिन इसके दो परिवार और हैं जो बॉम्बे सीढ़ी और सेडरंडी द्वारा भी बनाए गए कोये व्यापारिक रेशम के योग्य होते हैं। व्यापारिक रेशम मलबेरी एरी और टसर होते हैं। इसमें बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त रेशम सर्वोत्तम रेशम होता है। बॉम्बिक्स मोराई के अतिरिक्त अन्य रेशम कीट एरो रेशम कीट है, मूंग रेशम कीट है, एसर रेशम कीट है, देव मूंगा कीट है और सैतूत रेशम कीट भी होते हैं। मध्य प्रदेश में सैतूत रेशम कीट से बहुत बढ़िया रेशम का धागा प्राप्त होता है और इस उद्योग से भी किसान भाई अपनी आमदनी प्राप्त अधिक कर सकते हैं
1: जी। जी अच्छा, खेती के साथ साथ आदि समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाया जाए
0: जी
1: तो इससे आमदनी कैसे बढ़ सकती है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा किसान भाइयों को?
0: खेती के साथ साथ में किसान भाइयों, समन्वित कृषि प्रणाली एक ऐसा मॉडल है, इसमें किसान भाइयों को आमदनी बढ़ाने के लिए इस मॉडल में तालाब आधारित मुर्गी पालन, इकाई के साथ साथ में मत्स्य पालन, पशुपालन, बर्मी कंपोस्ट का उत्पादन, उद्यान की फसलें और कुछ चयनित फसलें किसानों के लिए कृषि संसाधनों के समन्वय, दक्षतापूर्ण उपयोग, जल संचय और इस तकनीक का ये बहुत अनूठा मॉडल है। इससे कृषि, पशुधन, मानव स्वास्थ्य सभी का कुशल विकास होता रहे और किसान भाइयों की आमदनी में बढ़ाने में ये सहायक है। कृषि विभाग में बलराम तालाब आधा एकड़ का निर्माण करें किसान भाई, समन्वित कृषि अपना कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तालाब की बंड पर अरहर की फसल, उद्यान की फसल, मुर्गी पालन से भी लाभ प्राप्त करेंगे ही, साथ ही डेयरी पालन करके इसमें डेयरी पालन में के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार करके उन्नत नस्ल के अधिक दूध देने वाले गाय, भैंस, बकरी पालकर दूध उत्पादन में वृद्धि करके किसान भाई अपनी आय में वृद्धि प्राप्त करेंगे, इससे भी उनको आमदनी अधिक प्राप्त होगी।
1: एक बहुत ही उभरता हुआ एक व्यवसाय है मधुमक्खी पालन
0: जी,
1: जो कि कहा जाता है कि कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ देता है
0: जी,
1: तो इसके बारे में कुछ बताएं किसान भाइयों को।
0: जो किसान भाइयों, जो हमारे यहाँ अनुपयोगी भूमि है और उस भूमि का कृषि में उपयोग नहीं हो रहा है और उन किसान भाई अपने उस भूमि में मधुमक्खी पालन का ये छोटा सा उद्योग कर सकते हैं और इसमें 10 डब्बे अगर वो लगाते हैं, एक वर्ष भर लगाए रखते हैं तो उनको एक वर्ष में 2 लाख तक अतिरिक्त इनकम इस छोटे से उद्योग से किसान भाइयों को प्राप्त होगी। और इसमें ये सलाह मैं देना चाहूँगा किसान भाइयों को कि नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क कर मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, मत्स्य पालन का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्रों में दिया जाता है। इच्छित किसान भाई जो भी इसका प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहें वो वहां से अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। अच्छा चौरसी जी, एक बहुत ही कम खर्च का व्यवसाय है
0: जी
1: जिसकी चर्चा हमारे आज कार्यक्रम में होना चाहिए, वो है मशरूम का उत्पादन
0: जी,
1: क्योंकि ये घर में ही जो हमारे गेहूं का भूसा है और बहुत मामूली खर्च में इसको गाँव में हम कर सकते हैं और अच्छे दाम में बेच करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, शिवपुरी जिले में हमारे मशरूम उत्पादन की बहुत अच्छी संभावना है और यहाँ किसान भाई चाहें तो इसका मशरूम का उत्पादन करके और इस छोटे से उद्योग की इकाई लगाकर भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो चाहे मशरूम उत्पादन हो, चाहे तो मधुमक्खी पालन हो
0: जी,
1: या डेयरी उद्योग हो
0: जी,
1: या रेशम कीट पालन हो
0: जी।
1: आपने एक चीज और बताई थी वर्मी कंपोस्ट
0: जी,
1: तो वर्मी कंपोस्ट की हम चर्चा करना चाहेंगे, इसको तो किसान भाई गांव में आसानी से बना सकते हैं,
0: बिल्कुल बना सकते हैं,
1: बेच भी सकते हैं,
0: बिल्कुल विक्रय कर
1: सकते हैं। तो ये किस तरह का उद्योग है कुछ बताएं?
0: ये एक छोटा सा किसान भाइयों का उद्योग है, जो हमारा कचरा, हमारी फसल के अवशेष, हमारे जान पशुओं का निकला हुआ गोबर, वो जो हमको मिलता है तो हमारा अवशेष पड़ा हुआ उसको हम एकत्रित करते हैं। और इसके हमारे कई पक्की विधियाँ भी हैं और कच्ची विधियाँ भी हैं। पक्के हम नाड़े बनाते हैं 12-3-6 का, और उसमें जो हमारे फसल का निकला हुआ अवशेष है हम उसमें डालते हैं, और उसके बाद इस प्रकार से हम 11 लेयर उसमें लगाते हैं। वो अलग अलग, पहले हम घास का रहेगा, उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेयर रहेगा, फिर उसमें हम छिड़काव करेंगे, उसके बाद हम ऊपर से गोबर डालेंगे। इस तरह से हम जो 3 फुट भरते हुए सिस्टम से आते हैं, और जब पूरा हमारा टांका भर जाता है उसमें हम केंचुआ छोड़ देते हैं। 30 दिन तक हम उसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद जब हमारा गोबर ठंडा हो जाता है तब हम उसमें अपने केंचुआ डालते हैं। और इस केंचुए से जो बना हुआ खाद होता है, मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, एक ऐसा खाद है जो दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं बनाता। इसमें पोटाश की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, खेतों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और ये वर्मी कंपोस्ट जहाँ उत्पादन हो रहा है, इसकी इकाई से जो वर्मी कंपोस्ट का खाद बन रहा है और पैकिंग करके जो किसान भाई बेच रहे हैं, उनको इससे अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सिपरी में भी इसका उत्पादन इकाई का हो रहा है। ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा कमाई का साधन है।
1: इन सब के अलावा हमारे शिवपुरी जिले में कहा जाता है कि बकरी पालन की बहुत संभावना है
0: जी,
1: तो कुछ बताएं इसके बारे में।
0: बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है हमारी खेती के साथ साथ में, जो हमारे घर में संसाधन है और उसी में हम बकरियों को पालते हैं। और बकरी अच्छी नस्ल की बकरी भी हम पाल लेते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करा के अच्छे दूध देने वाली बकरी की नस्ल भी हम प्राप्त करते हैं। साथ में बकरा उत्पादन के लिए जो बकरा का हम निर्यात करें, किसान भाई हमारे वो पशु चिकित्सा विभाग से संपर्क करके उस योजना का लाभ लेते हैं, और बकरी का दूध देने वाली बकरी प्राप्त करते हैं। और बकरा पालन से हम जो मांस की जो बिक्री के लिए किसान भाई, इससे भी अधिक आय अपनी प्राप्त करते हैं, और उनको आसानी से ज़्यादा इसमें कम लागत में अधिक उनको लाभ प्राप्त हो जाता है।
1: और शिवपुरी जिले में हमारे काफ़ी जंगल झाड़ियाँ हैं
0: जी,
1: जहाँ बकरियों को
0: आसानी से उनको चारा प्राप्त होता है
1: जी, ज़्यादा खर्च नहीं है इसमें।
0: हाँ, कम लागत में अधिक किसान को आय प्राप्त होने की संभावना है।
1: अब इन सब के लिए प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त होता है?
0: इसका पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से शिवपुरी जिले के अंदर और विभिन्न जिलों में हमारे किसान भाइयों को इस संबंध में प्रशिक्षण देने की पूरी व्यवस्था की गई है। फिर भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में भी हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर हैं, और उनके माध्यम से भी समय समय पर किसान भाइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: तो जो भी व्यवसाय आरंभ करें
0: जी,
1: पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लें
0: जी, इससे
1: इससे उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कैसे उद्योग की शुरुआत करना है
0: जी,
1: और कम पूंजी में
0: अधिक से अधिक उनको आमदनी प्राप्त हो।
1: तो श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया, सहायक संचालक कृषि कृषक प्रशिक्षण केंद्र शिवपुरी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बताया कि कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योगों से किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब अपन सुन रहे हते जे भेंट वार्ता, जिको विषय हतो आमदनी बढ़ाने में सहायक कृषि आधारित विभिन्न उद्योग, और जा विषय पे जानकारी दे रहे हते श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया, और इनसे बता रहे हते श्री एस एस चौधरी। तो भैया बहनों, अपन ने जे कितनी अच्छी जानकारी सुनी कि कृषि आधारित उद्योग से अपन अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और भैया जैसे अपने आर्थिक स्तर को भी अच्छो कर सकते हैं। भैया कितने काम है जो भैया अपने उद्योग हैं, भैया काम है जिन्हें भैया अपन अपने कर सकते हैं, और जैसे भैया अपने आर्थिक स्तर को अच्छो करके अपने भैया आमदनी बढ़ा सकते हैं। और देखो भैया बहनों, अपन देख ही रहे हैं कि अब कितने गर्मी पड़ रही है, और भैया पानी बरस से कितने ठंडा मौसम होगा है। और भैया जो बारिश होवे से भैया ठंडा मौसम तो हुआ है, लेकिन भैया जाके बाद भैया उमस भी होते हैं। और भैया अपन हो चाहे अपने जो पालतू पशु हो, उनके स्वास्थ्य के प्रति अपन को जागरूक होने चाहिए। काहे कि मनुष्य तो बोल देते, लेकिन पशु बेजवान होते हैं, वे बोल नहीं पाते हैं। जैसे भैया बिना भी अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल की ज़रूरत होते है, तो भैया पशुओं में बीमारियां फैलवे को खतरा अधिक रहते हैं। तो ऐसे में पशुओं को सुरक्षित रखवे और उनको दूध उत्पादन बढ़ावे के लाने अपन सबन को कछु बातन को ध्यान में रखना चाहिए। अपन को उनकी रहवे की जगह को भैया साफ सुथरो रहना रखना चाहिए, मच्छरों के प्रकोप से बचवे के लाने भैया।

उन्हें नीम की पत्ती को धुआं करना चाहिए, उन्हें हरो चारो या भैया अपन जो सानी कर रहे थे बाया ताजी करके खवाना चाहिए। जो नहीं कि भैया ज़्यादा देर तक रखी भाई जैसे संजा के बना लिया सवेरे वो खवा रहे तो भैया का है कि वो बासी हो जाते और जैसे बीमार हो सकते हैं पशु। और भैया पानी भी समय समय पे पिलाना चाहिए और ताजा ही पानी पिलाएं, ज़्यादा दिन तक रखो भाई पानी को नहीं पिलाना चाहिए जैसे भैया डायरिया जैसी बीमारी इनको बचो जा सकते हैं। और देखो भैया बहनों गर्मी के बाद अचानक भैया बारिश होवे पे भैया गला घेंटू और लंगड़ा बुखार यानी भैया घातक बीमारियों को खतरा बढ़ जाऊ थे। तो भैया अपने पशुओं को चिकित्सा से सलाह लेके टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। पशुओं को मच्छरों के प्रकोप से हरे पिस्सुओं से बचाव खिलाने शाम के टाइम नीम की हरी पत्तियाँ भैया नीम की पत्तियों को धुआं करना चाहिए। और देखो भैया रो पशुओं को संतुलित आहार विशेष देखभाल की ज़रूरत रहते हैं तो भैया ये चीज़ें अवश्य ज़रूरी है उन्हें देना चाहिए। और अपने जो पालतू पशु हैं चाहे गाय भैंस या बकरी सब तो भैया इनको अपन को उनकी अच्छे ध्यान रखना है और जैसे भी स्वस्थ रह सकें तो भैया अपने पशुओं की अच्छे से देखभाल करना है जैसे भी स्वस्थ रह सकें। और देखो भैया बहनों अब अपन अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और चर्चा करने जा रहे हैं समग्र विकास का आधार शिक्षा चा विषय पे। देखो भैया बहनों शिक्षा कोनो भी व्यक्ति और राष्ट्र के समग्र विकास को मूल आधार है जे केवल किताबी ज्ञान देवे तक सीमित नहीं है बल्कि बच्चन के मानसिक शारीरिक सामाजिक भावनात्मक और बौद्धिक चुनौतियों को सामना करवे और एक जिम्मेदार नागरिक बनावे के लाने अनिवार्य है। जैसे भैया रो सबन को शिक्षा से जोड़ना चाहिए और बच्चन को भी शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। बिना समय पे स्कूल तक पहुँचाना है शिक्षा बच्चन के मानसिक के संगे संगे शारीरिक खेल व्यायाम और भावनात्मक विकास भी होते जैसे कला खेल और पढ़ाई की गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़त है जैसे अपनी क्षमता को पहचान पाऊत हैं। और देखो भैया बहनों समग्र शिक्षा से समस्या समाधान टीम वर्क रचनात्मक और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं। शिक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व सहानुभूति और करुणा के पाठ पढ़ाऊत है जैसे करुणा में समय में अपन देख ही रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा भैया के भैया शिक्षा में डिजिटल लाइब्रेरी और भी कई उपकरणों के माध्यम से भैया आज के समय में शिक्षा सिखाई जा रही है जैसे बच्चन को सीखने में और भैया व्यवहारिक बनाव जा रहा है और उन्हें बहुत आसानी हो रही है भैया शिक्षा लेने में। और समग्र शिक्षा के लाने सरकारी पहल भी है कि जी को भैया भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू करी गई थी जी को नाम है समग्र शिक्षा अभियान। शिक्षा को अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 तक के बच्चन के लाने निःशुल्क हैं और अनिवार्य है। शिक्षा प्रदान करवे की भैया एक चे पहल है जो कि भैया रो कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा निरंतरता सुनिश्चित करत है। भैया 1 से कक्षा ले के 12वीं तक की कक्षा तक की बच्चन को भैया अवश्य शिक्षा देना है जो नहीं कि भैया एक दो क्लास पढ़ा लें और बस छोड़वा दें उनकी पढ़ाई मढ़ाई तो ऐसा नहीं करना है अपन को भैया शुरू से लेके भैया उन्हें जहाँ तक बच्चा पढ़ सके उनको मन लगाते हैं बिना वहाँ तक भैया उन्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाना है जैसे भैया उनको भविष्य अच्छे से हो सके। तो भैया बहन अपन को जो आप बच्चन को स्कूल पढ़वे के लिए जरूर भेजना है चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी दोनों को बराबर भैया शिक्षा को अधिकार देना है। जो नहीं कि बिटिया तो बस घर के काम काज निकलाने होते बेटा ही घर को चिरा होते ऐसा नहीं सोचना है भैया अपन को दोनों को बराबर पालन पोषण करना है शिक्षा देना है शिक्षा से वंचित नहीं करना है। भैया जैसे कहा है शिक्षा पाके भैया इनको विकास अच्छो होगो यानी कि अच्छो बुरो के बारे में मैंने पहचान होगी। और समग्र शिक्षा अभियान एकीकृत योजना है जो संसाधनों को सुव्यवस्थित उपयोग कार्यान्वयन को बेहतर बनाऊत है
और छात्रों के भविष्य की चुनौतियों के लाने तैयार करना सिखाऊ थे। संघ भैया राज्यों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करत है। तो भैया सरकार भी भैया समग्र शिक्षा अभियान चला रही है और कितने भैया सहायता दे उठे अपने ब्रिटेन का ये साइकिल भी हैं और भैया और भी भैया कई तरह की भैया सहायता राशि देते जैसे बेटा बेटी अपन जो है पढ़ सकें है ना। तो भैया अपन को भी यही बात को ध्यान में रखत भाई, बिना स्कूल से वंचित नहीं करना है, बिना स्कूल भी जाना है और उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं करना है। और देखो भैया बहनों अपन पढ़वे की बात कर ही रहे हैं शिक्षा की, तो कहना ना भैया जी पढ़ाई के ऊपर एक लोकगीत सुनोगा सुनो जाए, जी को गहबाव है राजू पटेल और साथी।

भैया रो अपन सुन रहे हते जे लोकगीत जिको गावा हतो राजू पटेल और साथी ने। देखो भैया बहनों अब अपने कार्यक्रम की चलवे की बेरा सोई हो रही है, तो भैया चलत चलत अपन आज के मौसम की जानकारी की चर्चा सोई कर लेते। तो आज शिवपुरी जिले को अधिकतम तापमान रहो 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहो 24 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता यानी नमी रही 31%। और हवा की बात करें तो भैया हवा की गति रही 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो भैया बहनों जे तो हती आज के मौसम की जानकारी। और भैया जय चर्चा के संगे अपनी बहन रजनी को चौपल कार्यक्रम से आज्ञा दो। राम राम, जय जवान जय किसान।

सुनिए मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक

0: the households. This immediately not only did, I mean, well, the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised. The larger, the basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that had happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes, yeah,
1: absolutely. Shubham, Aditi, Shubham abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL household ko khas karke Ujjwala yojana ne benefit pahunchaya hai rural women folk ko khas karke. उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेस ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहाँ पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो
2: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को. क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज में. ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी. जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर राजस्थान और गुजरात कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है. कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा जैसे आप पावर की बात कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए या पानी की बात कर लीजिए टॉयलेट्स की बात कर लीजिए. ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है. चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं. महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था. और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है. वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन

0: सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती जी, है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है
1: जी,
0: लेकिन
1: जी,
0: बहुत
1: जी.
0: बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डेफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मॉनसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए जो एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम पैनिश हो गया। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में। बहुत सारे इलाकों में अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें दिल्ली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: Absolutely, Shubma. Aditi, talking of social security and safety nets, of course, Shubma also mentioned about, you know, the health aspect. Now, health is one thing which just cannot be ignored, that is one. And of course, the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of, you know, maybe let's say 10, 12 years or 15 years back or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades, in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now, with the Ayushman Bharat scheme coming in, you know, it again revolutionized, you know, the kind of safety net which was so very much required for the common man. Now, this, in fact, has turned out to be the world's largest government-funded health insurance scheme, offering up to 5 lakh rupees per family. Now, how important this is, how significant is this?
0: See, this is extremely significant in the sense that it has helped in very deep penetration of cutting-edge health services across the country. Earlier, what was happening is that for even a very small procedure or a small facility visit, people had to come all the way to AIIMS, New Delhi, or in the north part of the country, they had to go to PGI, Chandigarh. In south, they used to throng Jipmer, Puducherry. You know, yeah, these are institutes of excellence in health. Mm-hmm. Everybody would have to rush to these institutions because there was no healthcare available next door. See, the concept of healthcare delivery becomes important and successful if you take healthcare services where people are living. So the entire infrastructure under the Ayushman Bharat scheme was conceived around these pillars.

0: वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान। जून 2020 में ये शुरू की गई थी। उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि
1: जी
0: वो
1: जी
0: सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे।
1: इवन इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
0: बिल्कुल, गिग वर्कर्स की भी
1: यस
0: स्वनिधि में वो भी काफ़ी हद तक कवर होते हैं। तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं।
1: जी
0: तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है। और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है। और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख, 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है
1: जी
0: वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के।
1: राइट अदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान। ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है। कुछ बताएं इसके बारे में।
0: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें
1: जी
0: बस छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है
1: जी।
0: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं लखपति दीदी योजना, उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है, और चाइना का 35.7 है, और US का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने

0: लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।
3: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पतंग फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर ने गाया है, राजेंद्र किशन का लिखा हुआ, चित्रगुप्त की धुन।

ऊंचे लोग फिल्म का ये गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

नम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: Both sides underscored the importance.
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
4: of our shared future.
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-2371-7117 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And Orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
6: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
6: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand trilateral highway.
0: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement. It is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman.
7: I'm confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. SEPA is a blueprint of our shared future.
0: Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement.
7: More than 10 consignments are being shipped availing preferential duty access in Oman from different parts of India. Oman is a gateway to the wider Gulf Cooperation Council, GCC, countries of the Middle East, to East Africa and the Indian Ocean economy through its ports at Sohar, Dukam and Salalah.
0: Mr. Goyal underlined that the India-Oman agreement is part of India's 9 free trade agreements covering 38 nations, finalized in the last 3.5 years. He added, India is negotiating agreements with several countries including Israel, Chile and Canada. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi, both the countries agreed to enhance defence industrial collaboration in futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles. In his opening remarks, Mr. Singh said the defence ties between India and Australia has strengthened significantly.
8: In the coming years, we work with a renewed momentum, effectively contributing to growth of bilateral defense relations. Excellency, today is the 5th anniversary of elevation of our relations to comprehensive strategic partnership. I appreciate the significant strides made in our bilateral relationship across a wide range of sectors, from political exchanges to defense partnership.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. In our special feature today, we bring a report on government's measures towards the welfare of farmers. A report.
9: The Narendra Modi government has taken several initiatives in the last 12 years for the welfare of farmers and enhancing their income. One of the most significant steps has been the launch of the PM Kisan scheme, which is one of the largest welfare initiatives in the country. Under this Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme, farmers receive 6,000 rupees annually directly into their bank accounts. More than 4,28,000 crore rupees has been transferred into the accounts of around 9 crore 50 lakh farmer families. The schemes like PM Matsya Sampada Yojana and National Livestock Mission were also launched to increase farmers' income through multiple sources. The efforts like PM Krishi Sichai Yojana and the Soil Health Card scheme have strengthened irrigation and soil productivity. Since 2014-15, nearly 26 crore soil health cards have been issued till March this year. The Fasal Bima Yojana has helped nearly 23 crore farmers with crop insurance claims worth 1,92,000 crore rupees. The Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana is providing a monthly assured pension of 3,000 rupees to small and marginal farmers. Talking to Akashwani News, a beneficiary of of Uttar Pradesh hailed the scheme, saying that it is beneficial for farmers as it will support their livelihood.
10: Pradhan Mantri Narendra Modi dwara chalai ja rahi Kisan Samman Nidhi Yojana ka mujhe bharpur labh mil raha hai. Isse mujhe kaafi sahayata milti hai. Hum samay par apne khad aur beej ki khareedari kar lete hain.
9: The minimum support price has become a lifeline for farmers as the government has fixed the MSP at 1.5 times the cost of production. Due to the government's policy support, the total food grain production has increased from 265 million tons in 2013-14 to around 358 million tons in 2024-25. India has also become the world's largest rice producer, surpassing China with a record production of over 154 million tons. Today, the Indian farmer stands not just as a cultivator but as a key driver of national growth. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
0: The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. A bench of Justices P.S. Narasimha and Arvind Kumar said the National Testing Agency is already facing multiple challenges after the cancellation of the examination. The court posted the matter for hearing on the 27th of next month. The Allahabad High Court has ruled that Lok Adalats and District Legal Services Authorities have no jurisdiction to grant divorce decrees, saying the power to dissolve a marriage rests exclusively with family courts. The Lucknow bench of the High Court said Lok Adalats are empowered only to facilitate amicable settlements and cannot exercise judicial powers reserved for competent courts. The last rites of veteran playback singer Suman Kalyanpur were performed with full state honours in Mumbai today. Ms. Kalyanpur passed away at her residence in Mumbai last night. She was 89. One of India's most celebrated singers, she was a prominent figure in Marathi Bhavgeet and Hindi film music. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Lok Sabha Speaker Om Birla have expressed grief on the demise of the popular singer. Malaysia has become the latest country to impose age-based restrictions on social media use by children. Under the new rules enforced from today, children below 16 years of age are barred from owning social media accounts, with platforms required to implement age verification systems and child safety features. The measures are aimed at protecting children from harmful content, cyberbullying, and addictive online designs. Companies that fail to comply could face penalties of up to 10 million ringgit. So far, Australia, Indonesia and Malaysia have introduced restrictions on social media access for children, while Brazil has mandated stricter parental oversight and age verification measures. Several other countries, including France, Spain, Denmark, Greece, Austria, Germany, the United Kingdom, Norway and Turkey, are also considering similar safeguards for young social media users. The India Meteorological Department or IMD has issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. The weather agency has predicted heavy rainfall over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds will be experienced in several parts of the country. The IMD has also predicted hot and humid weather conditions over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Andhra Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha and sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. On to sports, 22 Indian rowers have been inducted into the Target Olympic Podium Scheme or TOPS Development Group ahead of the Asian Games to be held in Aichi, Nagoya, Japan later this year. Among those included are Paris Olympian Balraj Panwar, Asian Games silver medalist Arvind Singh and double medalist Jaswinder Singh. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on staying safe during heat waves, precautions, preparedness and protection with Mr. D.R. Patnaik, Senior Scientist, IMD, and Dr. Rupali Malik, Department of Medicine, Safdarjung Hospital. Listeners can ask questions on the subject on telephone numbers 2371-7117 and 2331-4444, prefixing the Delhi STD code. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lhaing hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
11: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुजाकिरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टैरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फरोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साहिली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीराजम नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलात पर तफसीली मुजाकिरात किए, जिनमें तिजारत और इक्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुजाकिरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वजीर आजम ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदेह हों। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने, एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहिल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $2 अरब पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकत दार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरकी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तिजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आज़ाद तिजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिर खास स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। एलपीजी सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज्यादा बुकिंग हुई हैं।
12: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
11: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113.50 रुपये का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिले ज़िक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की

0: ये स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुंभों को 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: मुख्तलिफ जराये के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
2: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
3: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें NEET UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जाँच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जांच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और जिला लीगल अथॉरिटीज के दायरे अख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये बात कही। अर्जीगुजार का इल्जाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ ताउन को फरोग देने की अहमियत की तौसीख की है ताकि एक आज़ाद खुले पुरमन मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल कहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वज़राए दिफा मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरक सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी ताउन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरक लाहे अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादला ख्याल किया। वज़रा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मफाहमत नामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसी की गई। इस सिलसिले में कोलकाता में लोक भवन में आज हलफबरदारी की तकरीब मुनाकिद हुई। गवर्नर RN रवि ने वज़रा की काउंसिल में शामिल होने वाले नए अराकीन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी समेत दिगर सियासी लीडरों के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। आज काबिनी वज़रा के तौर पर हलफ लेने वाली शख्सियात में स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय, शंकर घोष और दीगर शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपान साहा और ऋतव्रता

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331048128, 2371717117, 2371710 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी कहीं सुनते रहे हैं कि लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज, लीची, आम, इनका सेवन करना है और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस, आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागडे हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
3: मैं श्रीता डॉक्टर बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है। ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वालों ने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है, COPD, अस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिए, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत बड़ा भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल में, जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव तरह डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर वो 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना डायरेक्ट है तो करते हैं। और एक डेफिनेशन

0: ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
0: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल एरिया जो 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
0: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
2: जी, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को और दीदी आपको भी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
3: कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है, और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें। पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
3: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं, जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जी का एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या हो?
3: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपके तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडियली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
3: जाता है।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत उपलब्ध कराई जा सकती है।
3: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
4: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
4: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
1: धन्यवाद।
4: जी मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना

0: पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
1: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसका जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
2: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
1: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी,
2: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
1: बिल्कुल।
2: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है, इसका क्या मतलब क्या होता है?
3: देखिए दादा, क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
2: और वो भी खतरनाक होता
3: है।
2: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान, हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरतें हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है, अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें, कॉफी पी लें तो बैलेंस बना रहता है, कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके?
1: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड, ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
2: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
5: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ अमित उपाध्याय। मैं ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें? जी
1: देखिए जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें गमछा जैसा कि कहा जाता है गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं खास तौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें। तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
2: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज़्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
1: किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सभी प्रीडिस्पोज्ड हैं। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
2: तो प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
1: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड हैं तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें। और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
2: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
6: हाँ जी
2: जी,
6: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
2: नमस्ते।
6: हाँ दीदी को भी नमस्ते, सर नमस्ते।
2: नमस्ते।
6: हाँ विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
2: जी जी।
6: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
2: जी,
6: इसका हमारे पर कोई शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
2: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा?
1: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
2: घर का तापमान, थोड़ा
1: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
2: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
2: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि IMD की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
3: देखिए IMD जो,
2: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा है, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
3: हाँ वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ पे बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है, तो देखिए जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला तो एक है

0: कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते, अपडेट मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो YouTube में अपलोड किया जाता है तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं, आपको ऐप से मिलेगा, WhatsApp में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक IMD का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में।
0: ठीक है, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30-3 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का जमीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मच्छर टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
2: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
2: जी, मैं रवि जवालिया जड़मीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
2: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरजेतन मशीन पे दत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है ये सभी को। तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उसको भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
3: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: हैं। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
3: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
3: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इनटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
3: बिल्कुल बहुत
1: का
3: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसके लिए
3: सुस्तीपन, दूध नहीं पीना, अगर बच्चे इतना छोटा बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमीडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, और कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र

0: गर्मी भी बढ़ रही है तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा, ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन से गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे।
2: देखिए जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं तो बट आजकल क्या होता है क्लाइमेट चेंज है तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा पकड़ेगा क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान क्या है?
2: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे किल करता है तो हीट वेव के कारण भी धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है एक जो भी राज्य में जहाँ हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं और ये बाकी जो एडवाइजरी इशू करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी ये सारे जो है एक तरीके से रहता है तो पहला उनको क्या होता है एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग ये हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनक लता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी ख्वाहिश हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और शामिल कर रहे हैं पहला पत्र लाबरिया भेरू इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और बामनिया परिवार के सभी सदस्य, गोल्ला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की पसंद है, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान और सादिक भाई और शाहिद भाई, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूभाई तड़वी, परु, मुबारक बारिकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारिकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना, मुबारक तड़वी, परवेज, रोजमीन, तामूर और समस्त तड़वी परिवार। तलाश फिल्म का गीत लता मंगेशकर रफी की आवाज। मजरू ने गीत लिखा है और धुन बनाई SD बर्मन ने।

0: फिर से तो फरमाना।
1: अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की पसंद पर।

अगले गीत के लिए अनुरोध लिखा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रविन राणा ने। डॉडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम ने। जय गजानन रेडियो श्रोता संघ कापसी रोड अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव बाकड़े, ज्योतिबाई बाकड़े, पवन कुमार बाकड़े, कमलाबाई, शिवसेना वहात अकोला महाराष्ट्र से कैलाश राव बाकड़े, वंदना बाकड़े और बाकड़े परिवार के सदस्य हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। दिले नादान फिल्म का गीत लता और किशोर की आवाज, नक्श लालपुरी ने लिखा, खयाम की धुन।

कार्यक्रम में अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहा है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। ये लिखते हैं घंटाघर चौक खंडवा से, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली। औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद कुमार वर्मा। एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। शैलेंद्र ने लिखा, शंकर जयकिशन की धुन।

कार्यक्रम में अगली पसंद सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाड़कर की। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली श्वेता सुमित कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी की। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हार्दिक मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, अंबिका बिरक की। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, कासिम अली, नदीम अली और नईमा बेगम की। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बीपी आरजू जाजोरिया की। झूठी फिल्म का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार का गाया, माया गोविंद का लिखा, बप्पी लहरी ने धुन बना।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म झूठे के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया ताल बागेश्री। इनके साथ तबला संगतकार है लक्ष्मण दत्त दीक्षित। विलंबित गत एक ताल और द्रुत गत तीन ताल में

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया ताल बागेश्री। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समाचार दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा

0: औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two.

0: Because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary, and so that's about it. Here a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to pay, repay loans. And then, because the mudra loan, as we can see, is of three stages: Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission, or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment, and that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number of percentage of them, because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success, that it is being envisaged.
1: Yes. Right, Shubh. देखिए अभी शुभ मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की. स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं आप?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम, और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीज़ें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है, और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक. लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की, और

0: किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस
1: जी
0: छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी
1: जी
0: कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है
1: जी जी
0: जो 6,000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा, इस
1: जी
0: वजह
1: जी
0: से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात
1: जी
0: की, और
1: जी
0: अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की।
1: महिलाओं के
0: ये 4 स्तंभ हैं, जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला एक साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और US का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इंपॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी
1: जी
0: हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक।
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: बनने के लिए चर्चा की है जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: एम्पावर
0: करना है।
1: करना है। राइट राइट थैंक यू सो वेरी मच शोमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, की वेलफेयर स्कीम्स एंड देयर ग्रासरूट इंपैक्ट। पार्टिसिपेंट्स वर शुभमोय भट्टाचार्य, इकोनॉमिक एनालिस्ट, एंड अदिति टंडन, सीनियर जर्नलिस्ट। मॉडरेटर वॉज निशित कुमार। This program was produced and presented

पर अब समय कह रहा है कि आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ। भजन है को अपनी आवाज से सजाया है भजन सम्राट श्री गोविंद भार्गव जी ने। आनंद लीजिए इस भजन का और जल्द मुलाकात होगी 5:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है।

0: समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों की गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी कर रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ है। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्शी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। किसी एक स्थान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन का असर सभी मोर्चों पर पड़ेगा। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान समर्थित हिजबुल्ला के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में लेबनान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the president has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work to

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।